इसका सदुपयोग करिए, इसका कुछ हिस्सा अवश्य भगवत भजन में लगाइए, इसका कुछ हिस्सा अवश्य आत्मचिंतन में लगाइए। नहीं तो भाई यही झांकी है कि हो अति दीन महा दुख पावत और लोग कुटुंब को न मुह लावत। बड़े बड़े घरों में देखा है भाई मैंने कि जो घर के वयोवृद्ध जन होते हैं वो घर के एक कोने में पड़े रहते हैं, कोई उनके निकट भी नहीं जाना चाहता। उस वृद्ध व्यक्ति को और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, भोजन वो अब अधिक कर नहीं सकता, वस्त्र आभूषण का कोई सुख रहा नहीं। उस वृद्ध को तो केवल इतना चाहिए कि कोई दो घड़ी उसके उसके पास बैठकर प्रेम से बात कर ले, और वो दो घड़ी प्रेम से बात करने वाला कोई नहीं होता। और जीव अपनी दुर्दशा का विचार करके रोता है, पर अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब रसना थकी न बोल्यो जाई, जब ऐसी स्थिति आए तब इसका विचार करने का क्या लाभ है। मैं भाई बल देकर एक बात कहा करता हूं, सही निर्णय तभी सही है जब वो सही समय पर लिया जाए। अगर समय चूका तो कितना भी सही निर्णय क्यों ना हो, भजन करने से ज्यादा सही निर्णय कोई नहीं है, लेकिन समय चूक जाने पर यदि आप भजन करना आरंभ करते हैं तो उसका वो लाभ नहीं होता जो होना चाहिए। और कोई कहे कि भाई आप संत लोग कहते हैं कि अंत समय भगवान नाम का स्मरण करने से गति हो जाती है, अरे गति तो हो जाती है, गति तो हो जाती है, अरे ये जीवन मिला इसका सुख तो पाते, इसका आनंद तो लेते, ये जीवन का एक एक दिन सुख स्वरूप हो जाता, जीवन का एक एक क्षण उत्सव स्वरूप हो जाता, यदि समय रहते चेत जाते, सभी समय रहते गुरु के चरणों से लगकर और भगवत भजन करना आरंभ कर देते। नहीं तो भाई गलितम मुंडम शंकराचार्य कहते हैं ना, अरे मूड मती, जब समय चला जाएगा मुख में दांत नहीं रहेंगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, तेरा कोई अपना तेरे निकट नहीं आएगा, क्यों उस समय की, क्यों उस अपनी दुर्दशा की प्रतीक्षा करता है।

और फिर कहते हैं मेरी बात सुहात न काहू ताते उपजत है उर्दाहू। अब मेरी बात भी किसी को नहीं सुहाती और अपनी ये दुर्दशा देखकर मेरा हृदय और जलता है, ताते उपजत है उर दाहू। और ऐसे भयंकर दुख की स्थिति में भजन होता है? सुख में प्रभु भूल जाते हैं, दुख में भजन होता नहीं।

अभी संभल जाइए भाई, मत आने दीजिए जीवन में वो कठिन समय। पकड़िए प्रभु के चरण। संसार को अपना समझने की भूल हमसे आज तक हुई है, और ये जितना दुख जीवन में है ये उसी भूल का परिणाम है। और मैं साथ साथ कहता चलूं, लड़ झगड़ मत पड़ना किसी से, बस केवल इस बात को समझ लेना, संसार में जितनी आशा है, अच्छा आशा अपने से ही तो होती है, पराए से कोई आशा नहीं है, पराए से कोई आशा नहीं है। और संतों का सिद्धांत है, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। कई बार आपसे मैंने कहा, भाई संसार से सुख की आशा का नाम ही दुख है, और सुख की आशा किससे होगी, जिसे आप अपना समझेंगे। एक बार अपना प्रभु को समझ कर देखिए, सुख की आशा पूर्ण हो जाएगी, सदा सदा के लिए पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए व्यास जी ने समझाया था, व्यास राधिका रमण बिन कहूं न पायो सुख।

तन बलहीन हुआ, बुद्धि कार्य नहीं करती, दो पग चलने के लिए भी मैं आश्रित हूं, झूठे कुटुंबी के रंग भीनो और सांचे प्रभु सो चित्त नहीं दीनो। जो वस्तुतः अपना था, जो जन्म जन्म का साथी है, उसके चरणों में कभी चित्त नहीं दिया और बस इसी झूठे संसार के रंग में रंगा रहा। रोगी कह रहा है, कहां लग कहूं मूर्खता अपनी, अब मैं अपनी मूर्खता कहां तक कहूं। ढक लिया जैसे जैसे माया ने मेरे मन बुद्धि को, आवरण पड़ गया मेरी मेरी बुद्धि पर और मैं सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाया, मैं सही समय पर सही दिशा में पग आगे नहीं बढ़ा पाया। नयन गए और श्रवण हूं और गए मुख दंत, बुद्धि घटी तन गति लटी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, तृष्णा को नहीं अंत। अच्छा, एक ये भूल भी न करना कि आपको लगे कि वृद्धावस्था आने पर विषय से अरुचि हो जाती है। महाभारत में भीष्म पितामह शरशय्या पर पड़े युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे रहे हैं और उस समय महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, विषय की वासना यौवन के काल में इतना पीड़ित नहीं करती जितना वृद्धावस्था में करती है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि पितामह, ये आप क्या कह रहे हैं, जब जब शरीर अशक्त है तो विषय में रुचि कैसे होगी। बहुत लोग ऐसा प्रयास करते हैं, भोजन कम कर देंगे और जाने कई कई साधन करते हैं कि मन से विषय की रुचि घट जाए। रस बल छूटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। हरि के भजन के अतिरिक्त मन को विषय से हटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, कोई साधन कुछ नहीं कर सकता, अंत में सब असफल है। तो महामहिम कह रहे हैं कि धर्मराज, मेरे जीवन का अनुभव है, वृद्धावस्था आने पर तृष्णा और बलवती होती है और अधिक दुखदायी स्थिति क्या होती है कि युवावस्था में तन में और मन में बल और शक्ति रहती है, इंद्रिय निग्रह करना सरल है, लेकिन वृद्धावस्था में तो तन अशक्त हो जाता है, बुद्धि कार्य नहीं करती और कभी कभी कभी कभी व्यक्ति इस बढ़ी हुई तृष्णा के कारण दुस्सह दुख पाता है। इसलिए स्वयं को सुधारने का, स्वयं को संवारने का और मैं कहूंगा स्वयं को सजाने का जो श्रेष्ठ काल है वो यौवन का काल है। युवावस्था में तो श्रृंगार अच्छा लगता है, बहुत छोटा सा बालक श्रृंगार करे तो भी अच्छा नहीं लगता, वृद्ध श्रृंगार करे तो भी संसार उपहास करता है। श्रृंगार कब अच्छा लगता है, जब युवावस्था होती है। ऐसे ही भक्ति क्या है, ये उर अंतर का श्रृंगार है, भक्ति जीवात्मा का श्रृंगार है। तो जब तन पर यौवन हो उसी काल में भजन करिए, उसी काल में हरि की भक्ति करिए। मैं तो कई बार कहता ही हूं ना आपसे कि भक्ति जीव को सताती नहीं है, भक्ति जीव को सजाती है, वो श्रृंगार कर देती है जीव का, अनेक अनेक सद्गुणों से वो सुसज्जित अलंकृत कर देती है जीव को, प्रभु के मिलन के योग्य बना देती है। पर मैं फिर कहूंगा भाई, सही निर्णय तभी वस्तुतः सही है जब वो सही समय पर लिया जाए। भजन तो करना है पर देर से नहीं करना है, देर ही अंधेर है, भजन के मार्ग पर देर ही अंधेर है। भजन करना है, आज करना है, अभी करना है, मन लगे तो भी करना है और मन लगे ना लगे तो भी करना है, भजन करना है, केवल भजन के लिए भजन करना है। ये भूला बिसरा जीव प्रभु के सन्मुख हो जाए, प्रभु से संबंध जुड़ जाए, प्रभु के चरणों से तन मन की गति रति लग जाए, इसलिए भजन करना है। प्रभु अपने लगने लगे इसलिए भजन करना है, प्रभु मीठे लगने लगे इसलिए भजन करना है। टूटी खाट न छाड़ी भावे, सुत के सुत

और बहुत लोगों से मैंने सुना है भाई, वो कहते हैं महाराज मरने से डर लगता है, हमको मरने से बड़ा डर लगता है। टूटी खाट न छाणी भावे और सुत के सुत नातीन खिलावे, लेकिन ये सब करने के बाद भी तृष्णा को नहीं, अंत संसार का विषय ऐसा है उस स्पर्श करते ही बढ़ने लगता है और फिर बढ़ता ही चला जाता है। विषय के सेवन से कभी विषय से अरुचि नहीं होगी भाई। ये सब बात मैं समेट कर एक पंक्ति में कह दूं, विषय का सेवन करने से विषय से अरुचि नहीं होगी, विषय के त्याग से ही विषय से अरुचि होगी। ये आप आज समझ लें या कभी समझिएगा। आप सोचें कि आज सेवन कर ले, कल दूर हो जाएंगे, कल कभी नहीं आएगा। विषय के सेवन से विषय में रुचि बढ़ती है। अग्नि में घी डालो तो अग्नि प्रज्वलित ही तो होती है। विषय का त्याग ही विषय से दूर लेकर जाता है। और मैं तो कभी कभी एकांत में बैठता हूं तो विचार करता हूं, दो स्थितियां आती हैं, मन जानता है कि यह अनुचित है, इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बार बार उस ओर जाता है, बलात् कोई उस ओर ले जाता है मन को। ना करो तो भी मन दुख पाता है, करो तो भी मन दुख पाता है, पर विचार करना चाहिए, अगर ना करके भी दुख है और करके भी दुख है तो फिर ना करके ही दुख पा लेना चाहिए। कम से कम उस ना करने की अवस्था में आप तो अपने साथ होंगे, आपका आत्म बल तो उस समय बना रहेगा। दुख तो है और संसार में सुख की आशा लगाना ही बड़ी मूर्खता है, तो दुख ही दुख है भाई। मैं तो इसलिए आपको बीच बीच में कह देता हूँ, स्मरण करा देता हूँ कि साधन का पथ है भाई बड़ा कठिन है, खरोई कठिन है भजन डिंग डरिबो। संसार सरल है, विषय का सेवन बड़ा सरल है, खूब आनंद आता है थोड़ी देर के लिए तो, लेकिन संसार का विषय का सेवन करते करते कब जरा जीर्ण हो जाती है ये देह, कब चेहरे पर झुर्रिया आ गई, कब बाल सफेद हो गए, रोज देखते थे आप दर्पण में, देखते ही देखते ये झांकी हो गई और अभी आगे जाने और क्या दिखाई पड़ेगा, नैन गए और श्रवण हूं और गए मुख दंत। हमारे वृंदावन में एक संत थे, भजन करते थे, बड़े विनोदी स्वभाव के थे, युवावस्था में ही आ गए थे, बड़ा सुंदर उनका दर्शन था, वृंदावन में रहकर भजन किया। वृद्धावस्था आई तो आते जाते कोई भी बाबा बाबा कहकर चले जाता था, तो हंसते हुए कहते थे, बाल सफेद देखकर कहते थे, बोले केशव केसन अस्करी जो अरिहू न कराही, बोले इन श्वेत केशों ने तो हमारे साथ में वो किया है जो शत्रु भी नहीं करता। बोले केशव केसन अस्करी जो अरिहू न कराही, किसी ने कहा बाबा ऐसा क्या कर दिया इन केशों ने, बोले अरे चंद्रमुखी मृगलोचनी और बाबा कह कह जाए। तो भाई देखते ही देखते ही ये स्थिति आ जाएगी। मैंने तो कहा ना कि जैसा जल वो कूप में वैसा बाहर आए, महात्मा खींचे तो भी उसमें से वही आएगा, दुरात्मा खींचे तो भी वही आएगा, तन की गति तो भाई वही होनी है, वही होगी। इसलिए काल चुरैया चुग रही, और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज तो कहते हैं अरे भूले भूले कोई भूले, तुम जिन भूलो मालाधारी। व्यास जी ने कहा मूंड मुंडाए की लाज नहीं भइए, आपको तो वैष्णव वेश मिला है, हरि का नाम मिला है माथे पर, ये हरि मंदिर है, गले में तुलसी की कंठी है, हाथ में जप की माला है, तुम जिन भूलो मालाधारी। बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान।

यह रुचय मुख नाम ना आवे, जैवो जम के घर ही भावे। और उसमें दुर्दशा में दुर्दशा क्या है कि पीड़ा पा रहा है मन, पर फिर भी रुचता संसारी है, फिर भी इच्छा संसार की है। अभी मैं आपसे कह रहा था ना, छोड़िए एक बार मन को, छोड़ दीजिए, देखिए मन कहाँ जाता है, सहज में मन किस ओर जाता है, सहज में मन संसार का स्पर्श करता है कि नहीं, ये देखिए और देखते रहिए। रोगी यही देख रहा है कि मैं इतना दुख पा रहा हूं, देख लिया संसार का हर रंग कच्चा है, झूठा है, पर इतना होने पर भी कैसी माया ने मेरी मति फेरी है, कैसी मेरी मति भ्रमित हुई है कि यह रुचय मुख नाम ना आवे, तो भी संसार रुचता है पर मुख में हरि का नाम नहीं आता, मुख में हरि का नाम नहीं आता। और जैवो जम के ही घर भावे। सुनता हूं शास्त्रों पुराणों की कथाएं, सुनता हूं कि अंत में जम के घर जाना पड़ेगा, पर जम के घर जाना तो ठीक है लेकिन संसार नहीं छोड़ना है, ऐसी मन की दुर्दशा हो गई है। और ये आपकी मेरी भाई हम सबकी कहानी है, ये आपकी मेरी हम सबकी कहानी है। एक बात गांठ बांध लीजिए, आज भजन नहीं किया कल कभी आएगा नहीं, कल कभी नहीं आएगा भजन, आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और मैं तो आपको एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि अरे कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, देखिए उनका स्वभाव कैसा है। रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किसो, श्री ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, राई के दाने जितना कोई उनका भजन कर ले उसे अपना बना लेते हैं, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। और सही कहते हैं संत भाई, अस प्रभु छाण भजही जे आना, ऐसे प्रभु को छोड़कर कोई संसार का भजन करे तो ते नर पशु बिन पूछ समाना। और कल एक और बात मैंने आपसे कही थी, विवेकहीन पशुवत है पर एक प्रकार से पशु से भी गया बीता है, मनुष्य अगर विचार नहीं करता तो वो पशु नहीं है, पशु से गया बीता है, क्योंकि पशु में तो विवेक की संभावना नहीं है, आप में तो संभावना है, आप में तो संभावना है। तो मनुष्य यदि भजन नहीं करता है, मनुष्य यदि आत्म कल्याण का प्रयास नहीं करता है, मनुष्य यदि विवेक युक्त होकर विचार नहीं करता है तो वो पशुवत नहीं है, वो पशु से भी गया बीता है। पशु पंछी ताको समय मानत अपनो राई, मन लागो अति झूठ सो तज साच ही सुख मूल, मन लग गया इस झूठ में अब क्या करें, अब हटाए हटता नहीं। और ये सरल नहीं होगा भाई, आज तो आप में बल है, शक्ति है, सत्संग में जा सकते हो, दो घड़ी बैठकर भजन कर सकते हो, ग्रंथ का पाठ कर सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, आने जाने में स्वतंत्र हो, कल जब निर्भर हो जाओगे, कल जब आश्रित हो जाओगे और कुछ जीवन में नहीं रहेगा तब आपको लगता है भजन हो पाएगा। कितना क्षण भंगुर ये देह है,

झिली ना झिली, इसीलिए कहा है हरि का नाम रटले री रसना फिर अंत समय ये हिली ना हिली। अरे नेक सी पीड़ा कहीं तन में हो जाए सब भजन साधन छूट जाता है, सब भजन साधन छूट जाता है। नेक सत्तन में कष्ट हो, मन में कष्ट हो, इसलिए आज ये सुख का जो समय है इसका लाभ लीजिए। ये सुख सदा के लिए आपके पास रह जाए, आपके निकट रह जाए, इसका सदुपयोग करिए। भजन करिए और कब करिए? आज करिए, अभी करिए, यहीं से आरंभ करिए। और छाण सुधा के सुख फल ही जाए गही विष शूल, ये विष के फल मैंने खाए हैं। और जो

और जैसे जैसे तन जीर्ण हुआ वैसे वैसे लोभ का रोग और बढ़ता चला गया। युवावस्था में तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, लड़ लेता है शरीर रोग से, वृद्धावस्था में तो वो भी नहीं रहता। ये पूरी चर्चा का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे तन जीर्ण होता है, संसार तो यही सिखाता है ना भाई, ये कोई अवस्था है भजन करने की, जब समय आएगा तब भजन करेंगे। संसार तो यही शिक्षा देता है, संसार तो यही सिखाता है, संसार तो कहता है मन लगाकर काम करो। संसार की शिक्षा तो यही है भाई, मन लगाकर काम करो। हमारा काम मन लगाकर करो, हमारे काम में कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए, हमारा काम करो, समय पर करो, मन लगाकर करो, यही संसार की सीख है। पर भाई संत सिखाते हैं मन लगा के हरि का नाम लो, संसार का काम बुद्धि लगा कर करो, माने जितनी आवश्यकता है उतना कर दो, उसके साथ बहुत लिपटने चिपटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बुद्धि का प्रयोग करिए, इन संतों की बात को सुनिए, फिर मनन करिए, चिंतन करिए, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या तात्पर्य है इनका, बुद्धि का प्रयोग संसार में करिए, निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना करिए, पर मन लगाकर हरि का नाम लीजिए। यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहूँ कौन है सचु पाए। और आज महाराज श्री ने आज के प्रसंग के बिल्कुल अनुकूल ये पंक्तियां मुझे लाकर दी हैं, और मैं चाहूंगा ये बड़ा सुंदर श्री चाचा वृंदावन दास जी का पद है, आप सब साथ साथ गाना।

और आपके हाथ में जो वाणी है उसके बिल्कुल अंतिम पृष्ठ पर चार पंक्तियां लिखी है श्री ध्रुवदास जी की हैं। प्रार्थना की है युगल चरणों में, सत्र का विश्राम इन्हीं पंक्तियों से किया करेंगे।

रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। भगवत गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदे सार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिए। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता।

0: powerful leadership tool you have is your own personal example. You are listening to the thoughts of Mr. Sonu Sharma, who is a life coach and motivational speaker. Keep listening, Radio Maharani, Kutch, Hatke.
1: हमने कुछ किया पूरी दुनिया के अगेंस्ट जा करके, या अपना कोई डिसीजन लिया कि मुझे ये सही लग रहा है, लोगों ने मना भी किया फिर भी हमने किया और उसमें हम फेल हो गए। अब वो बार बार हमको अपना वो फेलियर याद आ रहा है, नहीं भी आ रहा तो दुनिया हमको याद दिला रही है आ करके, है ना। जैसे हम कुछ और करने के बारे में सोचते हैं तो लोग हमको वाला फेलियर याद दिला देते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं है, वो देख पहले भी तूने किया था, क्या हुआ। तो बाहर से भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और अंदर भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। चलो बाहर से जो अटैक हो रहा है उसको तो आप फिर भी हैंडल कर सकते हो, उनसे लड़ लो झगड़ लो, तो वो भी कहेंगे यार क्या लड़ाई झगड़ा करना है, छोड़ो बात मत करो इनसे इसके बारे में। बट अंदर जो अटैक हो रहा है उसको कैसे हैंडल करें, राइट। सारा खेल यही है कि हमारे अंदर हर वक्त कई तरह के अटैक्स चलते रहते हैं, उससे कैसे बचोगे। आप चाहे पहाड़ पे चले जाओ, चाहे मूवी देख लो, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ देर के लिए आप उसको भूल सकते हो, ठीक है ना। दारू पी ली, कुछ देर के लिए भूल गए, फिर याद आ जाएगा। जैसे होश में आओगे फिर से याद आ जाएगा, सारी बातें दिमाग में घूमने लग जाएंगी। तो खुद से कैसे बचे, समझ रहे हो। यहां पे जो लिखा हुआ ना सेल्फ रिफ्लेक्शन, इसका मोटिव यही है कि मेरे सारे सेशंस का एसेंस क्या है। ये नहीं है कि बाहर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर जो हमारे गड़बड़ हो रही है उसको कैसे हैंडल करना है, अंदर जो अटैक्स होते रहते हैं थॉट के लेवल पे हमारे ऊपर उसको कैसे फेस करें। क्योंकि अगर आप उसको फेस कर गए तो बाहर आपके लिए फेस करना क्या बड़ी बात है, समझिए ना। और एक्चुअल में बाहर कोई अटैक होता नहीं है, होता अंदर ही है। बाहर अगर कोई आपको कुछ बोल भी रहा है तो अल्टीमेटली चॉइस आपके हाथ में है कि उसका असर आपके ऊपर हो या ना हो, अगर इस बात को हम समझ पाए तो। आप चाहो तो अपने मन में बोल दो अरे ये तो है ही ऐसा, समझ गए, असर होना बंद। आपको नहीं इसने ऐसा क्यों बोला, तो असर ज्यादा होगा। जैसे कोई अगर कोई आपको पता है कि कोई पागल है, वो आकर के आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा, तो क्या उसके उसके बारे में आप बैठ करके सोचोगे 10 दिन तक कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो किसी का बेसिक नेचर है उल्टे सीधे काम करना, या उल्टा सीधा आपको बोलना, या आपको तंग करना। तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है उसका बेसिक नेचर है, कोई बात नहीं, तो जैसे आप अंदर से बोल देते हो ना कोई बात नहीं, ये क्या फर्क पड़ता है, उसका जो नेचर है उसका है, मेरा जो नेचर है मेरा है, तो उसका असर आपके ऊपर होना बंद हो जाता है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, बट ये एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है। जो आंसर है वो ये, डू यू पीपल वॉन्ट कि इस क्वेश्चन को मैं टच करूं डीपली, कि हमसे कोई गलती हो गई, अब वो गलतियां क्या हो सकती है। गलतियां हो सकती है रिलेशनशिप से रिलेटेड, ये तो बहुत ज्यादा हो रही है आजकल गलतियां फेसबुक से गलतियों की शुरुआत होती है, फिर पता नहीं गलतियां कहां की कहां पहुंच जाती हैं, है ना। अब वो रिलेशनशिप खत्म हो गई, अब आप उसके बारे में सोच रहे हो तो आपको अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है। ऐसे ही होता है ना कि मैंने ये कैसे कर दिया, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूं, मैं कितनी बेवकूफ हूं, ऐसी ऐसी चीजें आती है माइंड में। हाँ, कि मैं तो समझ नहीं पाती हूँ चीजों को। नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि समझ एक दिन में डेवलप

0: नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। कोई माँ के पेट से समझदार नहीं निकलता है, राइट? जब ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे और उन एक्सपीरियंसेस से आप सीखोगे, तभी तो आपको समझदार कहेंगे। जिसकी लाइफ में जितनी ज्यादा गड़बड़ हुई होगी और अगर उसने उससे सीख लिया है तो वो उतना ही समझदार है। विजडम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फेलियर्स एंड सेटबैक्स एंड योर पावर ऑफ ओवरकमिंग इट। इसको ध्यान से समझ लो। तो जो भी गड़बड़ हुई है आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, उसको पहले तो, सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है, गड़बड़ हुई है, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। तो हो सकता है आपको जवाब मिले कि कहीं मैंने कमिट करने में जल्दीबाजी तो नहीं कर दी थी इस रिलेशनशिप में, मे बी कि 4 दिन की रिलेशनशिप थी और मैंने फटाफट से डिसीजन ले लिया। तो इससे आपने क्या सीखा कि आप जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है लाइफ में, स्पेशली बड़े डिसीजन तो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। कौन सा कपड़ा खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, ये तो आप जल्दी में भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-20 रुपए महंगा भी खरीद लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम क्या है, वहां पर पूरा टाइम लगाते हैं। 10 दुकानों में जाएंगे, ट्राई करेंगे, 100 रुपए के पीछे पता नहीं कितनी किचकिच करेंगे। 100 रुपए भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 20-20 रुपए के पीछे कितनी किचकिच करेंगे। और लाइफ के जो बड़े डिसीजन है वो कैसे लेते हैं, बहुत सारे लोग तो लेते ही नहीं है, उनके लिए वो डिसीजन कोई और ले लेते हैं, करियर का डिसीजन, रिलेशनशिप का डिसीजन, ये वो लेते हैं तो जल्दी में ले लेते हैं, होता है ना। स्पेशली हमारे इंडिया में बड़ा चलता है इसको, अरेंज मैरिज बोलते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट अरेंज मैरिज, इट इज अ वेरी वेरी वेरी क्या कहूँ, वेरी नो कमेंट्स। तो जो भी है, अरेंज मैरिज में क्या गड़बड़ मुझे लगती है, मुझे जो जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो मुझे गड़बड़ लगती है वो क्या है कि लड़का लड़की मिले और दोनों तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया। अरे बहुत बढ़िया है, अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तू हाँ कर दे, और उसने हाँ कर दी, ठीक है बढ़िया है, मतलब कि घर वाले जो है उनको बढ़िया लग रहा है या लग रही है। आप तो थोड़ा तो टाइम लगाओ, एक घर खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं, यहाँ कुछ खरीद नहीं रहे हो माना, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसीजन है अपनी लाइफ का, इनफैक्ट सबसे बड़ा डिसीजन है। गाड़ी गलत ले ली तो उसका सोल्यूशन है, कबाड़ी को दे सकते हो, ये पति को किसको कबाड़ी में दोगे। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, इसको पकड़ के रखो, दिस इज कॉल्ड विजडम। ये मैं कहां से बोल रहा हूं, शायद अगर आज से आप 20 साल पहले मेरे से ये सब बातें करते तो मैं नहीं बोल सकता था ऐसा। मैं क्या कहता, अरे करो करो करो, और पीने वान करा, लगा दो बियर, लगा ये करो, बाइक ना लटा के मोड़ेंगे, मैंने सारे काम करे ऐसा नहीं करे हैं, लटाए भी और कई बार खुद भी लेट गया, और पीछे वाला कहता यार मैंने क्या गलती की, तो मुझे ऐसे ही ठोकता रहता है, आप समझ रहे हो। तो ये सब काम मैंने करे हैं, तो वो करके मैं अब आपको बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा मत करो, मैं कह रहा हूं समझ लो कि करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, कर भी दिया तो उसे सीख लो, ग्रो आउट ऑफ इट। मैं ये नहीं कह रहा गलतियां मत करो, अरे मैंने खुद बहुत गलतियां करी है, तो मैं आपको कैसे बोलूंगी गलतियां मत करो, गलतियां करो बट लर्न फ्रॉम इट, सही काम करो लेकिन उसमें चिपके मत रहो कि मैंने पता नहीं क्या उखाड़ दिया, समझ गए, मैंने ये सही काम कर लिया, मेरी फैमिली में और जो लोग हैं वो नहीं कर पाए, व्हाटएवर, आपने टॉप कर दिया कहीं पर, तो अपनी ईगो को मत बढ़ाओ, ग्रो आउट ऑफ इट, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। मिल रहा है आपको जवाब, मिल रहा है। एक बार मैं इसको थोड़ा और डीपली टच करता हूं, तो जब भी हमारे अंदर से ये आता है कि हम पुरानी सिचुएशंस के बारे में सोच सोच करके दुखी हो रहे हैं, तो उससे सीखो, गो इनटू द रूट कॉज ऑफ इट, ताकि वो जो गलती आपने करी वो दोबारा मत करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। पहली बार, अब देखो कितनी मजेदार चीज निकल के आ रही है बात करते करते, पहली बार अगर आपने लाइफ में कोई भी गलती करी है तो वो गलती नहीं है, समझ गए, अनजाने में करी है तो वो गलती नहीं है, लेकिन उसी गलती को आप बार बार कर रहे हो, ये गलती है। मुझे एक चीज की नॉलेज ही नहीं है और मैंने सही सोच करके किया लेकिन मेरे साथ में गलत हो गया, ये गलती नहीं है। कुछ भी नया करेंगे तो उसमें सही और गलत होने की तो पॉसिबिलिटी रहेगी ना, सक्सेस फेलियर की तो रहेगी ना, तो आप फेल हो गए इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उस फेलियर से कुछ सीख नहीं रहे हो और दुखी हो रहे हो, ये गलती है, ये ब्लंडर है। अपनी गलतियों के बारे में सोच सोच करके आप दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये गलती है। कोई भी गलती आपकी लाइफ की इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपके ऊपर हावी हो सके, हमेशा अपने अंदर इस बात को याद रखना, मेरी लाइफ की जितनी भी बड़ी से बड़ी गलतियां हैं मैं उससे बड़ा हूं, अपने आप को ये बोलो। आप कितनी भी बड़ी गलती कर लो, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आपकी गलती को एब्जॉर्ब कर जाए। अगर आप यूनिवर्स के एंगल से देखोगे तो आपकी गलती बहुत छोटी लगेगी, जिसको आप बड़ी समझ रहे हो। कोई भी गलती बहुत बड़ी नहीं है, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं है जिसको माफ ना किया जा सके, चाहे फिर वो आपने करी चाहे किसी और ने करी। तो गलतियों से सीखो, सीख करके क्या होगा, आप धीरे धीरे मैच्योर होते चले जाओगे, अंदर से स्ट्रांग होते चले जाओगे। ये दोनों चीजें तभी होंगी जब आप सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गलत रिलेशनशिप में एंटर करके ये सीखा कि मुझे पेशेंस रखना है लाइफ में, तो क्या ये छोटी क्वालिटी है? डू यू थिंक पेशेंस इज स्मॉल? मतलब पेशेंस इज सो बिग यार। पेशेंस से आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, सही डिसीजंस ले सकते हो, सही चॉइसेस ले सकते हो, अगर आप में पेशेंस है तो। आराम से सोच समझ करके डिसीजन लेना है, ठीक है ना?
1: माय क्वेश्चन इज दैट what how should one maintain mental stability and balance of mind in situations of life and death?
0: बहुत भारी सवाल है वैसे तो, बट ये सवाल क्योंकि हर एक को फेस तो कभी ना कभी करना ही है। जो लोग आपके आसपास में जिनको बहुत प्यार करते हो उन्होंने मरना ही। अब मैं देखो कितने आराम से बोल जाता हूं ये चीज, बिकॉज़ मेरे लिए मैटर नहीं करती। अब ऐसा क्या हो गया, आप वो इंसान जिससे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, कोई भी हो सकता है, वो मर सकता है ना आज, हम खुद भी मर सकते हैं। तो कैसे अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि इन सब चीजों का भी हमारे ऊपर असर ना हो। ऊपर ऊपर से तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता ऊपर से नहीं होगा, अंदर से नहीं होगा। ऊपर और अंदर का मतलब हमको समझ आ रहा है? देखो इसको भी ध्यान से समझना पड़ेगा, व्हाट इज आउटर व्हाट इज इनर। आप एक मूवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, रो रहे हो, तो ऐसा लग रहा है आपके ऊपर भी असर हो रहा है और अंदर भी हो रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो मूवी। तो आपकी अचीवमेंट्स का भी आपके ऊपर असर ना हो, आपके फेलियर्स का भी आपके ऊपर असर ना हो, दुनिया जो आपके बारे में कहती है उसका भी आपके ऊपर असर ना हो, हेल्थ से रिलेटेड आपके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए बॉडी में उसका भी आपके ऊपर असर ना हो। ये सब चीजें ऐसी हैं जो होनी होनी है आप लोगों के साथ। अभी हो सकता है समझ नहीं आ रही होंगी, पर जैसे जैसे एज बढ़ेगी धीरे धीरे समझ आएगी ये सारी बातें। उसके अलावा आपके आसपास में अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार हो गया जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तब भी आपके ऊपर असर ना हो। और भगवान ना करे अगर वो इस दुनिया से चले गए, उसका भी आपके ऊपर असर ना हो। क्या ये हो सकता है? पहले तो सवाल ये है, क्या लगता है आपको, हो सकता है नहीं हो सकता है? सच बोलो, ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ बोलने के लिए बोलना है। नहीं हो सकता, हो सकता है, हो सकता है। क्यों कह रहे हो कि नहीं हो सकता है? देखो, धीरे धीरे अगर आपको ये समझ आया है, अगर ये नहीं समझ आया तो नहीं हो सकता। मान लो कि जो मैं आपको बात बोलने वाला हूं, एक बार को मान लो कि क्या पता वो सच हो, मैं सच बोल रहा हूं अपनी तरफ से, लेकिन आपको हो सकता है समझ ना आए, मुझे समझ आ गई है इसलिए मेरे लिए वो सच है। वो क्या है? अब इससे आपको जवाब मिल जाएगा कि लाइफ में बैलेंस कैसे बनाते हैं। बैलेंस का मतलब लोग ये समझते हैं कि हमेशा हम खुश रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे। नहीं जी, रो रहे हो तो खुल के रोना है, ठीक है? दुखी हो रहे हो तो पूरी तरह से होना है, हंस रहे हो तो खुल के हंसना है, जी रहे हो तो खुल के जीना है। गेम है जिसमें मैं एक प्लेयर हूं, मैं गेम खेल रहा हूं, लेकिन जो मैं गेम खेल रहा हूं उसमें जो भी कुछ हो रहा है उसका एक्चुअल मेरे ऊपर असर नहीं हो रहा है। ये बात अभी हमको समझ नहीं आती है। अगर ये बात हमको समझ आ जाए, जो मैं रोल की बात करता हूं, मैंने अपने हाउ टू कंट्रोल योर माइंड वाले में भी एग्जाम्पल दिया था, एक रोल का एग्जाम्पल दिया था कि आप एक रोल प्ले कर रहे हो और आप एक्चुअल में कुछ और हो, तो आपको समझ आए कि मैं हूं कौन और जो मैं एक्चुअल में हूं उसके ऊपर कुछ भी हो रहा है इस खेल में उसका कोई असर नहीं होता है। तो बाहर से देखने में लग रहा होगा कि आपके ऊपर असर हो रहा है, शायद आंसू भी आ रहे होंगे, शायद आप हंस भी रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे, सक्सेसफुल हो रहे होंगे, लेकिन अंदर से यू विल ऑलवेज बी अनटच्ड। अगर ये नहीं पकड़ में आया तो कोई सोल्यूशन नहीं है, ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछोगे तो। क्योंकि क्या होगा, आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो लेकिन आपको यह नहीं पता कि यह गेम है, लाइफ एक गेम की जैसी है, लेकिन आप इस गेम में सीरियस हुए पड़े हो तो क्या होगा, आप सही डिसीजंस ले ही नहीं सकते। आपके जो भी डिसीजंस होंगे वो ज्यादातर गलत ही होंगे। क्यों गलत होंगे? जबकि आपकी सलाह सही होगी, आप अपने दोस्तों को सलाह दोगे वो सलाह सही होगी, लेकिन खुद को सलाह दोगे वो गलत होगी। क्यों? मैं बीच में आ गया ना, बस इसको ध्यान से समझ लो। ये बात पकड़ में आ रही है ना कि जब हम सलाह देते हैं किसी और को तो बड़ी सही सलाह देते हैं, जब हम खुद उस सिचुएशन में होते हैं तो हम बेवकूफों की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने आप को उस सिचुएशन से आइडेंटिफाई कर दिया है। जैसे गेम खेलते खेलते सपोज आप भूल ही गए तो क्या होगा, एकदम से वो बंदा मरा या उसको चोट लगी या उसका पैर टूटा, हड्डी टूटी, तो आप रोने लग जाओगे, चीखने चिल्लाने लग जाओगे। मतलब हो क्या रहा है, हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए उस गेम में, डिटैच होकर के उस गेम को नहीं देख पा रहे हैं। इसको ये कहना भी गलत नहीं होगा, हम भूल ही गए हैं कि ये खेल है, ठीक है ना। खेल में हम बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, लाइफ को एक खेल की तरह देखो। मेरे लिए लाइफ कैसी है, मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे व्हाट डज लाइफ मीन टू मी, मेरे लिए जो बॉडी है ना और जो माइंड है, माइंड मतलब समझते हो कि जो प्रोग्रामिंग है जिसके थ्रू ये बॉडी काम कर रही है, एक सॉफ्टवेयर है एक हार्डवेयर है, क्लियर है ना। जो हमारे थॉट्स है वो सॉफ्टवेयर के जैसे है, बॉडी हार्डवेयर के जैसी है। जैसा सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है वैसी बॉडी एक्ट कर रही होती है। सॉफ्टवेयर निकाल दो बॉडी में से तो बॉडी कैसे एक्ट करेगी, क्लियर हो रहा है ना। तो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है एक हार्डवेयर है। तो मेरे लिए लाइफ क्या है, मैं दोनों से अनटच्ड हूं, ना तो मैं हार्डवेयर हूं ना मैं सॉफ्टवेयर हूं, मैं इन दोनों को क्रिएट करने वाला हूं। बन गया ना खेल, पहचानना की जरूरत ही नहीं, आप हो, आप इस बोतल से अलग हो, इसमें पहचानने की क्या जरूरत है। आप बोतल को देख रहे हो, बोतल आपको नहीं देख रही है, क्या ये फैक्ट है या कोई इल्यूजन है? फैक्ट है भाई। आप अपनी इस बॉडी को देख सकते हो लेकिन ये बॉडी आपको नहीं देख सकती, ये फैक्ट है या इल्यूजन है? फैक्ट है। तो फैक्ट के बारे में क्या सोचना है, क्लियर हो गया। तो मैं जानने वाला हूं इस पूरे के पूरे खेल को, तो अब इससे क्या होगा, देन यू विल बिकम एन आर्टिस्ट, एक कमाल के खिलाड़ी बन जाओगे आप लाइफ के। लाइफ आपके लिए खेल जैसी होगी, मतलब एक कमाल का खेल। अब खेल क्या है कि किस तरह से इस हार्डवेयर को, मतलब कि इस बॉडी को, और इस सॉफ्टवेयर को, मतलब कि माइंड को प्रोग्राम किया जाए, इस बॉडी को डिजाइन किया जाए, और इसके आसपास में जो रिलेशनशिप्स हैं, जो बिजनेस है, जो काम है, जो भी कुछ मैं कर रहा हूं इस सोसाइटी के लिए या अपने लिए या ये वो, सबको कैसे परफेक्टली किया जाए। तो परफेक्ट कभी हो नहीं सकता, लेकिन नहीं भी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये खेल है। समझ पा रहे हो? तो धीरे धीरे, अगर और कुछ नहीं तो यार मेरी इतनी सी बात को समझो, ज्यादा डीप में मत जाओ, इतनी सी बात को समझो कि जिंदगी एक खेल है। अगर ऐसा आप मान लेते हो तो आपका गया क्या, ये बताओ मुझे। आपको सब कुछ मिल गया लेकिन आपका गया कुछ भी नहीं, क्योंकि अब इस खेल को आप अच्छे से खेल सकते हो। फिर 24 घंटे आप यही दिमाग लगाओगे कि अब कहां पर इस खेल में ना क्या कमी रह गई है। जैसे वीडियो गेम खेलते हैं, हम सब खेलते हैं, उसमें क्या पहले दिन में जब आप खेल रहे होते हो आप एक्सपर्ट हो जाते हो? पहले दिन में क्या 10वें लेवल पे पहुंच जाते हो? ऐसा नो, नहीं पहुंचते हो, टाइम लगता है ना। लेकिन क्या आप पहले दिन में 10वें लेवल पे नहीं पहुंचे तो क्या खेल खेलना बंद कर देते हो? आप उसको परफेक्ट करते रहते हो, बार बार गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर उसको बेटर करते हो, बेटर करते हो, बेटर करते हो। धीरे धीरे आप क्या होता है, आपका लेवल बेटर होने लग जाता है। आप 5वें पे जाते हो, 10वें पे जाते हो, 20वें पे। अब जिंदगी के खेल पे और वीडियो गेम में क्या फर्क है? वीडियो गेम में एक एंड आ जाता है, एक एंड आ जाता है कि ये 50वां लेवल है, इसके आगे और कुछ नहीं है। जिंदगी के खेल में कोई एंड ही नहीं है, देयर इज नो एंड, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। दैट परफेक्शन इज जस्ट अ वर्ड व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। नहीं तो मैं करता क्या, समझ रहे हो? नहीं तो आप करोगे क्या? अगर परफेक्ट हो गए तो अब खेल में मजा ही नहीं रह गया। जब तक जिंदा हो, जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक हम हैं इस दुनिया में, तो उस खेल को हम बेटर करते चले जा रहे हैं, और बेटर, बाहर नहीं अपने अंदर। और अगर अंदर के खेल को आपने परफेक्ट कर लिया तो आपको यह भी पता होगा मेरे को किस आदमी से कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है। मतलब अब आप अवेयर हो गए उस खेल में, अभी आप अवेयर नहीं हो, अभी आप बस अपने बारे में सोच रहे हो, आप सामने वाले के बारे में नहीं सोच रहे हो। आपको ये तक पता होगा कि इस खेल में अगर मैंने ये उल्टा बोला अपनी वाइफ को तो वहां से एक रिएक्शन आएगा जिसकी वजह से हमारी 4 दिन तक लड़ाई चलेगी। क्यों बोलना है मत बोलो। क्यों ऐसी बातें बोलनी है जिसकी वजह से कलेश होने वाला है, या उन्होंने कुछ बोल दिया तो चुपचाप मुंह नीचे करके वहां से निकल जाओ, कितना मजा आएगा खेलने में। मतलब जब तक आपकी सांसें चल रही होंगी बीमार हो गए, अभी क्या होगा बीमार हो गए तो रोने लग जाओगे, या थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई, थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया तो क्या होगा दुखी हो जाओगे। दुखी क्या होना है, खेल है, खेल का पार्ट है। बीमार होगा उस बीमारी को देखो, समझ पा रहे हो क्या मुश्किल है करना, बहुत आसान है अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है तो। अपनी उस बीमारी को डिटैच होकर के देखो कि मेरे हाथ में एक रिमोट है यानी कि माइंड, और ये बॉडी है जो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, और ये बॉडी बीमार हो गई, अब मैं क्या करूं। अब उस रिमोट में क्या ऐसा कोई बटन है जिससे या तो बीमारी ठीक हो, या वो बीमारी दोबारा ना हो, या अगर बीमारी पता है कि हो गई है और इतने दिन लेगी ये ठीक होने में और उसका उसकी कोई दवाई अभी बनी नहीं है इस पर्टिकुलर गेम के अंदर जिसको वर्ल्ड बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं, तो मैं क्या करूं। चलो एक्सेप्ट कर लेता हूं, खेल है, हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है, 10 दिन में गायब, समझ गए। देन यू हैव पेशेंस आल्सो, ठीक है, खेल चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है। खेल में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, क्या फर्क पड़ता है। रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो गई, क्या फर्क पड़ता है। जो अच्छी है आज कल बुरी भी हो सकती है, जो आज बुरी है कल अच्छी हो सकती है। खेल की तरह देखो, बिजनेस को खेल की तरह देखो, लाइफ को खेल की तरह देखो, अपने आप को बेटर बनाने के बारे में सोचो।

क्योंकि फिर हमारी सारा जो सुख दुख है वो चीजों से रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड है, बाहर जो चीजें उससे रिलेटेड है। सारा कंट्रोल दुनिया के हाथ में है, हमारे हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं। आ रहा है ना पकड़ में? चीजें आ गई चली गई, क्या फर्क पड़ता है, खेल है। समझ गए? आज ये बॉडी है, इस बॉडी के आसपास में और बॉडीज है, कल एक बॉडी उसमें से कम हो गई, क्या फर्क पड़ता है, खेल है। ये धीरे धीरे समझना है आपको इसको, ये बॉडी कम हो गई चाहे दूसरी बॉडी है, क्या फर्क पड़ता है, खेल है। बीमार हो गई फिर ठीक हो गई, समझ रहे कितना मतलब मजेदार है, इट्स फनी एक्चुअली। अगर आप इसको लाइट हार्टेड होकर के देख पाओ तो आपके लिए एक्चुअल में दूसरों की लाइफ तो फनी ही है, बस अपनी लाइफ ही सीरियस है। अरे पड़ोसी के साथ कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब आपके लिए फन है। अपनी लाइफ में जरा से भी कुछ हो जाए तो ये क्या हो गया मेरे साथ में, क्या मूर्ख वाली हरकत कर। बी मैच्योर, बी वाइज, समझो कि किसमें आपकी पावर्स बढ़ेंगी और किसमें घटेंगी। बिजनेस में लॉस लग गया, मान लो बहुत बड़ा लॉस लग गया, अब लग रहा है कि बेटा कल सड़क पे आने वाले, क्या हो गया, खेल है। अब देखते हैं अगली चाल क्या होगी, मुझे खुद भी नहीं पता कि अगली चाल क्या होने वाली। अरे मजा आ गया, खेल है। यही तो खेल का मजा है, मुझे नहीं पता अगले कदम पे क्या होने वाला, यही तो एडवेंचर है। देखो एक वीडियो गेम है जिसमें जो लेवल्स आप क्रॉस कर चुके हो उसी को बार बार क्रॉस करने में मजा आता है या अगले लेवल पे जाने में मजा आता है, ये बात लोगों को समझ नहीं आती है। रियल लाइफ में जैसे जिंदगी जी रहे थे आज से 10 साल पहले, आज भी वैसे जी रहे, रिपीट मोड, ईट स्लीप रिपीट, ईट स्लीप रिपीट, रिपीट कर रहे हैं, क्या मजा है, सेम लेवल पे। इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है सारे के सारे, उनके पास जाकर के बैठोगे खुद थके हुए हैं, आपको भी थका देंगे। लाइफ नहीं नजर आएगी, बॉटल जैसे है, समझ गए ना, बॉटल मुर्दा है ना, मुर्दा है ना, इसके अंदर जान नहीं है ना, लोगों के अंदर जान है क्या? अरे नहीं, बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके अंदर जान होगी, मतलब वो जिंदगी के हर पल में आपको एक्टिव मिलेंगे। बच्चों के साथ खेलेंगे तो खुल के खेलेंगे, काम करेंगे तो खुल के करेंगे, जो कर रहे हो खुल के करेंगे, इश्क करेंगे तो खुल के करेंगे, कमाल के आशिक होंगे, समझ गए, इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी चीजें जो आदमी सोच भी नहीं सकता वो सोच सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनके लिए ये खेल है। लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या एक हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप परफेक्ट हो सकती है, सोच सकते हैं, सोचते नहीं, लोगों को सोचने में डर लगता है, हो सकता है, बहुत आसान, देख सकते हैं मेरी आंखों में, झूठ नहीं बोल, बहुत आसान है। अगर खेल समझ जाओ तो, खेल समझ आए तो, समझ गए ना, मेरा पति है, उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में, अब मुझे सारा कुछ याद आ रहा है, उसने पहले भी वो किया था, अब जिस बात पे हमारी लड़ाई हो रही है वो तो हम भूल ही गए हैं, हमारी बहस किसी और बात पे हो रही है, अब वो सारा कुछ आ गया, मैं क्या करूं, अब वो भी चीख रहा है मैं भी चीख रही हूं, समझ रहे हो, ये क्या गेम चल रहा है यार, इसको आराम से समझो, इसको खेल की तरह देखो। लग गई तो क्या हो गया, लगी हुई है लाइफ में, सबकी लगी हुई है, क्या हो गया, खेल है, खेल है जी, अभी लगी हुई है, कल बेटर हो जाएगी लाइफ, जरा सा कुछ अच्छा हो जाएगा, आज जो जॉब है वो अच्छी नहीं है तो आज बुरी हालत है, ठीक है, पार्ट ऑफ गेम है जी, पार्ट ऑफ लाइफ है, कल एक अच्छी जॉब लग जाएगी, हम एकदम से खुश होने लग जाएंगे, फिर वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ये गेम है। बी एडवेंचरस, बी रेडी टू प्ले दिस गेम ऑफ लाइफ। अगर ऐसे आप बन सको, जो बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो कहां है फियर ऑफ डेथ, बताओ, इफ यू नो दैट कि बॉडी जिसको हम डेथ बोलते हैं, इस बॉडी को बचाने का कोई तरीका नहीं है, मरनी ही मरनी है, जानी जानी, चाहे ये बॉडी हो चाहे कोई भी बॉडी हो, जो अंदर का सॉफ्टवेयर है जो इससे कनेक्टेड है, वो जब ये बॉडी नहीं तो वो सॉफ्टवेयर कहां है, समझ गए, तो सॉफ्टवेयर भी गया, हार्डवेयर भी गया, बचा क्या, मैं बचा, ये मैं नहीं पता कि क्या बचता है क्या नहीं बचता है, और मैं हूं कौन, ये नहीं पता है, तो फियर ऑफ डेथ निकल जाता है। कोई और भी अगर गया तो क्या गया, बॉडी गई ना, कुछ है जो नहीं मरता है, और वो हमको समझ आ जाए कि वो जो कुछ है इस पूरी दुनिया में एक ही चीज है और कुछ नहीं है, बाकी सब मरता है।

सब मरता है जी, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मरता। कुछ ऐसा है जो पिछले हजारों सालों में, लाखों सालों में, करोड़ों सालों में, जब से दुनिया थी, है और जब तक रहेगी, वो नहीं मरा। अगर हमको समझ आ जाए कि मैं वो ही हूं, तो अब ये खेल कैसा होगा? समझ पा रहे हो? मतलब इवन इफ आई वॉन्ट टू, आई कैन नॉट डाई, एंड इवन इफ आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दिस बॉडी, दिस कैन नॉट सर्वाइव, दिस हैज टू डाई, इज द पार्ट ऑफ द गेम।

0: आज मैं आपको बताता हूँ हेलमेट ना पहनने के दो फायदे।
1: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
0: पहला फायदा, आपके ऊपर मूवी बनाई जाएगी, क्योंकि सार फूटने से आप गाज नहीं बांध सकते हैं।
2: बहुत तेज हो रहा है।
0: दूसरा फायदा, आपकी पुलिस वालों से अच्छी जान पहचान हो जाएगी, क्योंकि हार सिग्नल पर वो आपको रोक ही लेंगे।
3: अपना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी कुछ हटके।

गुड मॉर्निंग फरीदाबाद भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? इस शानदार सुट्रैक के साथ आ गई हूँ मैं लेकर यहाँ पर मॉर्निंग एक्सप्रेस। आज अंजलि हूँ आपके साथ हर सुबह की तरह। भाई देखो, ये वाली सुबह भी होने वाली है एकदम मस्त, यानी कि यहाँ आपको अपडेट मिलने वाली है आपकी सिटी से लेकर देश दुनिया में क्या हो रहा है ये सब आपको बताऊंगी। वेदर से लेकर आज का स्पेशल डे क्या है ये भी आपको बताने वाली हूँ। तो भाई और क्या कुछ वायरल हुआ है इस बारे में भी बात करने वाली हूँ। तो बहुत सारी चीजें है आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बस यही कहना चाहूंगी कि हो जाइए रेडी, फटाफट से मसाला वाली चाय अपने हाथ में रख लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और इस शानदार से ट्रैक को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग है

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इस शानदार ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजे अंजलि, आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो भाई अब टाइम हो गया वेदर अपडेट का, और अगर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए तो 41 डिग्री जाने वाले, इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 27 है, और विंड स्पीड आपको मिलने वाली है 18। ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो 12% है, और बेसिकली डे होने वाला है सनी सनी, यानी कि अच्छी खासी धूप अच्छी खासी गर्मी आज आपको मिलने वाली है। तो बस यही बोलना चाहती हूँ, इस गर्मी भरे मौसम में अपना ख्याल जरूर रखेगा और साथ ही सुनते रहेगा रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सर, आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टैक्स, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं, रेंट पे है, EMI पे।

0: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
1: जब का फालूदा कर दिया यार।
0: बाय।
1: सुनो तो कहाँ चली।
0: बाय।

स्वागत है आपका रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहां पर आज मैं एक तड़कती भड़कती गुड न्यूज आपके लिए लेकर आई हूं। आपको अक्सर बताती हूं कि किस तरह से साइबर क्रिमिनल्स हमारे आसपास बढ़ते जा रहे हैं और आए दिन मार्केट में एक नया स्कैम नजर आ रहा है। लेकिन भाई इस बार दिल्ली ने कर दिखाया है। दिल्ली में साइबर क्राइम के खिलाफ एक मेगा ऑपरेशन चलाया गया था इन दिनों, जिसका नाम था साइबर हॉक। और इस साइबर हॉक यानी कि इस ऑपरेशन के चलते सिर्फ और सिर्फ 48 आवर्स के अंदर ही ना दिल्ली पुलिस ने IFSO के साथ मिलकर 700 से ज्यादा साइबर क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लिया है। भाई बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, लेकिन आप ये देख रहे हो कितनी ज्यादा तादाद बढ़ चुकी है इन साइबर क्रिमिनल्स की। तो भाई देखिए, जब साइबर क्रिमिनल्स इतने हैं हमारे आसपास, तो कितने इजी चांसेस हैं हम सबका साइबर फ्रॉड का शिकार होने का। अगर इस रेड की मैं बात करूं तो रेड्स के दौरान ही पुलिस को बहुत सारी चीजें मिली हैं, जैसे कि फिशिंग रैकेट, ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल थेफ्ट के बड़े बड़े मॉड्यूल्स। आपको क्या लगता है कि साइबर क्राइम ऐसे ही हो जाता है? भाई पर्टिकुलर एक मॉड्यूल बनाया जाता है, जिस मॉड्यूल के चलते पूरा का पूरा प्लान ये लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे किस तरह से एक इंसान की पर्सनल डिटेल्स लेनी है और उसे किस तरह से फ्रॉड के चक्कर में फंसाना। और भाई इतना ही नहीं, अगर टोटल स्कैम अमाउंट की मैं बात करूं तो टोटल स्कैम अमाउंट रहा लगभग 100 करोड़ बताया जा रहा है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें मिली है, जैसे कि लैपटॉप्स, मोबाइल, हार्ड ड्राइव्स और ना जाने भाई कितना कुछ। और अगर मैं स्कैम हॉक की बात करूं तो अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग ये इस साल का सबसे बड़ा साइबर क्रैक डाउन बताया जा रहा है, जिससे मैसेज सिर्फ क्लियर है कि ऑनलाइन फ्रॉड करोगे तो भाई साइबर हॉक तुम तक जरूर पहुंच जाएगा। तो जितने भी स्कैमर्स मुझे सुन रहे हैं, हमेशा मैं कहती हूँ ना कि जितने भी लिसनर्स मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आज ये मैसेज स्पेशली उन स्कैमर्स के लिए, अगर आप मुझे सुन रहे हैं ना तो भाई साइबर हॉक हो सकता है आपके ऊपर, इसलिए सुधर जाइए, अभी टाइम है। और हम जैसे लोगों को ना आराम से रहने दीजिए यार, मेहनत करके कमाइए, क्यों हमारी मेहनत की कमाई अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराते हैं तो भैया पकड़े जाओगे। और तो बस मैंने सोचा क्यों ना इस खुशी को और भी डबल कर दिया जाए, सॉन्ग मैं आपके लिए चला रही हूँ, एंजॉय कीजिए इस सॉन्ग को और मिलते हैं छोटी म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।
2: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
3: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
2: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

ये हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जरूरी क्यों है शेयरिंग इज केयरिंग? बिकॉज एक्सचेंज करने से प्यार बढ़ता है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जी अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। यानी कि आज का दिन हमें ये बताता है अपने गिफ्ट्स, अपने आइडियाज, अपनी स्माइल, पॉजिटिविटी एक्सचेंज करने से प्यार बढ़ता है आपस में। ये सिर्फ चीजों का एक्सचेंज नहीं बल्कि इमोशंस और कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने का दिन है। तो आज के दिन एक्सचेंज क्या कर सकते हैं ये भी बताने आ गई मैं आपको। आज के दिन आप गिफ्ट्स या छोटी बहुत सरप्राइज एक्सचेंज कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स और काइंड वर्ड एक्सचेंज कर सकते हैं, नॉलेज और आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं, साथ ही टाइम और अटेंशन एक्सचेंज कर सकते हैं। बिकॉज कभी कभी एक छोटा सा जेस्चर भी ना किसी का पूरा दिन बना देता है। और आज का दिन अकेले नहीं आया, आज का दिन अपने साथ एक मैसेज लेकर आया। एंड मैसेज ऑफ द डे ये है, एक्सचेंज सिर्फ मटेरियल चीजों का नहीं बल्कि फीलिंग्स का भी होना चाहिए। तो आज

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम है। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
4: Oh, sorry.

0: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
1: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
0: क्या बात कर रहे हो?
1: हाँ।
0: आगे सुनो।
1: सुनाओ।
0: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
1: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
0: अरे एक ग्लास तो पीती जा, सुन।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: सचिन ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई? हा?
2: पापा रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ।
1: यहाँ क्या कर रहा है? बीच सड़क पर नाच कर
2: फील कर रहा हूँ।
1: अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

0: मलयाली क्रिश्चियन है वो, जैसी।
1: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
2: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इस शानदार से ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूं आरजी अंशी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो भाई आज मैं बहुत ही प्यारा मैसेज आपके लिए लेकर आई हूं एंड ये मैसेज शेयर किया गया है एक इंडियन की तरफ से, यानी कि एक इंडियन ने ऑस्ट्रेलिया से एक बहुत ही प्यारी सी बात शेयर किया। और बात ये है कि जो इंसान ऑस्ट्रेलिया में रहता है, अभी उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ, उनकी कार के विंडशील्ड पर एक नोट लगा था जिसमें लिखा था सॉरी फॉर हिटिंग द लेफ्ट साइड ऑफ योर कार्स डोर, हियर्स माय कॉन्टैक्ट। तो भाई जब भी आपको ये नोट मिले तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं जल्दी में हूँ तो मुझे निकलना पड़ेगा, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि मैंने आपकी कार को हिट करने के बाद वहाँ से भागना सही समझा। तो भाई सोच के जरूर देखिएगा कि अगर आपसे अनजाने में कभी कोई गलती हो जाती है, क्योंकि गलती अक्सर अनजाने में ही होती है, जो आप जान पूछ कर करते हैं उसे गलती नहीं कहा जाता। अगर कभी भी आपसे कोई गलती होती है तो बिना कुछ सोचे तुरंत उसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए, और क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका एक छोटा सॉरी ना किसी के लिए कितना बड़ा काम कर जाता है। आई नो वो उस नुकसान को तो कम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये इंसानियत को जरूर दिखाता है। तो बस इस इंसान ने जिसकी कार हिट हुई है, उन्होंने बोला कि ये छोटी सी बात ना, ये छोटी सी लाइन मेरे दिल को छू गई। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया में अगर कोई अक्सर गाड़ी ठोक देता है ना तो वो वहां से भाग जाता है, कभी भी सॉरी नहीं बोलता। लेकिन जिस देश में वो अभी रह रहा है, यहाँ पर ग्रेटनेस ना जितनी बड़ी बिल्डिंग्स है ना, जितने बड़े रोड्स है, उनसे कहीं ज्यादा बढ़कर है। यहाँ पर लोगों का बिहेवियर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ये सिर्फ ट्रैफिक या कार की बात नहीं है, ये बात है ईमान की, जिम्मेदारी की और वैल्यूज की। तो बस यही बोलना चाहती हूँ कि जब भी आपसे कोई गलती हो जाए और बस आपको लगे ना कि अब मुझे माफी मांग लेनी चाहिए, तो जरूर जाकर माफी मांगिए, ये इनिशिएटिव जरूर लीजिएगा एंड आई एम डैम श्योर फिर देखेगा कि आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा सामने से जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो बस इन सारी चीजों का ध्यान रखिए। और जब भी कभी अगर आप रोड पर निकलते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि रोड पर सिर्फ अपने आप का ध्यान नहीं देना होता है, हमें उन सभी लोगों का ध्यान देना होता है जो उस रोड पर चल रहे होते हैं, जो उस कार में बैठे होते हैं, जो उस बाइक पर सवार होते हैं, सो दैट कि हमारे साथ साथ ना वो लोग भी सेफली घर पहुंच सके। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

जब ट्रैफिक हो टाइट और मौसम का मूड हो लाइट, वही मॉर्निंग एक्सप्रेस में मिलती है ट्रेंडिंग बाइट्स। सुनना ना भूले सुबह 7 से 10 ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हट।

और भाई क्या हाल चाल है आपके। इस बेहतर हाल चाल को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने ही तो मैं यहाँ आती हूँ इस शानदार से ट्रैक के साथ। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। अच्छा पहले तो ये बताइए कि रात को नींद पूरी हुई या नहीं। आई नो आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पूरी नींद लेने के बाद भी ना सुबह थका थका सा फील करते हैं, सुबह बेड छोड़ने का मन ही नहीं करता। फिर चाहे अलार्म कितना बजता रहे बस उसे 5 मिनट बोल बोल के स्नूज मोड पर डाल देते हैं। तो अगर आप भी कुछ इस तरह फील कर रहे हैं ना इन दिनों, तो आपको बता दूं कि आपको हो रहा है डिसेनिया की प्रॉब्लम। और अगर डिसेनिया की मैं बात करूं तो ये लेजीनेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। कहीं आपको लगे कि आज आप एलसी फील कर रहे हैं तो भाई इस वजह से ये सारी चीजें हुई, नहीं। एक्सपर्ट्स कुछ और कहते हैं एंड एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये अक्सर आपके डिप्रेशन, स्ट्रेस, इवन बर्न आउट या फिर डिजास्टर्ड स्लीप साइकिल से लिंक्ड होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी आपकी बॉडी रेस्ट ले चुकी होती है पूरी तरह से, फिर भी ना आपका माइंड थका हुआ रहता है। आपको रहता है कि बस और कुछ काम नहीं करना, बेड पर सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना है। तो भाई मैं पहले ही बता दूं आपको, अगर बहुत लंबे टाइम तक आपको ऐसी फीलिंग हो रही है या फिर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा थकान फील कर रहे हो इन दिनों, तो ये मेंटल हेल्थ का सिग्नल हो सकता है। तो भाई प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, भाई अपनी सेल्फ केयर पर ध्यान दीजिए, अपनी नींद पर ध्यान दीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि मुझे तो स्ट्रेस ही नहीं होता, भाई आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है एंड स्ट्रेस को मैनेज करना तो भाई सबसे ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पर। तो भाई अगर आपको लगता है ना बहुत ज्यादा बिजी हैं आप, कभी टाइम ही नहीं मिल रहा आपको, तो भाई बिजी आप हमेशा रहेंगे, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जो वीकेंड आएगा ना, इस वीकेंड में आप अपने लिए एक छोटी सी ट्रिप प्लान कर सकते हैं, सो दैट कि आपका जो स्ट्रेस है ना वो दूर भाग जाए भले ही कुछ समय के लिए, ताकि आप इस फीलिंग से थोड़े देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाइए। और बस यही कहना चाहूंगी कि अपनी सेल्फ केयर पर जरूर ध्यान दीजिए। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: जब ट्रैफिक हो टाइट और मौसम का मूड हो लाइट, वही मॉर्निंग एक्सप्रेस में मिलती है ट्रेंडिंग बाइट। सुनना ना भूले सुबह 7 से 10 ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके। सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंसी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। और भाई बहुत सारी बातें मैं आपके साथ करती हूँ, लेकिन आज जो मैंने चीज नोटिस किया ना, आज हम बात करने वाले उस चीज के बारे में। अभी आपने बहुत सारे डिफरेंसेस देखे होंगे पहले की जनरेशन में और ये अब की जनरेशन में, जिन्हें कहा जाता है 90s vs 20s की जो जनरेशन है भाई, बहुत ही ज्यादा अलग है। हमारी अगर मैं बात करूँ तो हमारे टाइम पर, यानी कि अभी मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी भाई मेरे बचपन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास टॉयज ज्यादा होते थे, मोबाइल होता ही नहीं था। लेकिन आजकल ना बच्चों के हाथ में मोबाइल ही देखने को मिलता है, खिलौने दूर दूर तक देखने को मिलते ही नहीं है। एंड इसके ऊपर एक रिसर्च की गई और रिसर्च में यह आया है कि ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल हो रहा है। भाई जितने भी बच्चे हैं उनका फोकस धीरे धीरे खत्म होता जाए। और फिर अगर इससे रिलेटेड स्टडी की मैं बात करूँ तो बार बार स्क्रोलिंग करना, नॉन स्टॉप नोटिफिकेशन देखना, साथ ही रील्स और शॉर्ट्स का एडिक्शन आजकल हर एक बच्चे को है। और ये सब मिलकर ना एक बीमारी बनाते हैं, यानी कि बच्चों में इंटेंशन और ADHD जैसे सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो बस यही बोलना चाहूंगी कि जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, प्लीज मेक श्योर करें कि आपके बच्चे फोन तभी इस्तेमाल करें जब बहुत ज्यादा जरूरत है, अदरवाइज आप ही उनकी हेल्प करें, उनका होमवर्क, उनके असाइनमेंट कंप्लीट करें।

से इस मुद्दे पर ध्यान दीजिए, स्क्रीन टाइम लिमिट कर दीजिए अपने बच्चों के लिए, आउटडोर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंक्लूड कर दीजिए सो दैट कि बच्चे बाहर जाकर खेलें, कल एक्टिव रखें। तो बस यही कहना चाहूंगी कि ध्यान दीजिए इन सारी चीजों को। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तो एंजॉय कीजिए पास्ट ब्रेक जो है खास आपके लिए।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक?
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो।

शानदार ट्रैक के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ मैं अक्सर आपको ये बोलती हूँ कि सोशल मीडिया जितना आपको लगता है ना कि ये आपका दोस्त है, उतना ही ये आपको स्कैम का शिकार बनाने में मदद करता है। अभी दरअसल हाल ही में एक ऐसा केस हुआ जहां पर ये देखा गया कि सोशल मीडिया पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद बैंगलोर के एक शख्स को अपने गंवाने पड़े 65 लाख रुपए। तो भाई यही बोलना चाहूंगी कि अगर दोस्ती करनी है तो असल जिंदगी में जाकर दोस्त बनाइए, क्योंकि वो दोस्ती ना तो शायद जेन्युइन हो सकती है, लेकिन ये जो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पर दोस्ती करते हैं ना, इस दोस्ती का कोई भी भरोसा नहीं है भाई। ये कभी भी आपके अकाउंट को खाली कर सकते हैं। एंड बार बार मैं आपको बताती भी हूँ कि अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें, अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें। और सोशल मीडिया वर्चुअल वर्ल्ड है, वहाँ पर सारी चीजें रियल लाइफ में जो है बताने की जरूरत वैसे भी नहीं है। तो बस इन सारी चीजों का ध्यान रखिए। और बस यही आपके लिए एक रिमाइंडर लेकर आई थी कि जब भी कभी अगर दोस्ती करने जा रहे हैं तो सारी चीजों को सोच समझ कर ध्यान में रखते हुए उस इंसान से दोस्ती कीजिएगा और उतनी ही बातें शेयर कीजिएगा जितना आपको लगता है कि जरूरी है। अपनी सारी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कैम ना उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा होता है जो बहुत ज्यादा ओवर शेयर कर देते हैं और फिर अपने ही ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिए, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: राजा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद,
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे ग्लास तो पीती जा, सुन।

शानदार ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूं आरजे अंजली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। फिलहाल बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ की हैं, बहुत सारी अपडेट्स मैंने आज आपको दी हैं और मेरा टाइम हो गया है यहाँ से जाने का। बेसिकली सुबह 7 बजे आई थी और 10 बजने वाले हैं, तो भाई कल फिर से मिलेंगे बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी अपडेट्स के साथ, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साथ। लेकिन तब तक मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा और फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस ऑन योर रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।
3: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
2: ये सड़कें तुम्हारी कहानियां नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
1: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM कुछ छक्के।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कौन, द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। देखो शाम का बोला सुबह आ चुका है आप सभी के साथ। और अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम तो सुहाना सा ही है। धूप है बट धूप कहाँ लग रही है। देखो आज मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंच सकता है 35 डिग्री, यानी कि दिन में दोपहर 2 से 3 बजे के आसपास आपको 35 डिग्री देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि आपको हल्के फुल्के बादल भी देखने को मिल जाए। बट एक बात मैं बोलूँगा यहाँ पर कि आप लोग अपनी तबीयत का ख्याल रखें, क्योंकि ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि लोग नहीं रख रहे हैं। तो अभी मैं बात करता हूँ फिर से मौसम की। तो AQI ऑलमोस्ट 150 के आसपास है, यानी कि अनहेल्दी कैटेगरी में है, बट स्टिल बेटर है पहले के टाइम से। और हल्की फुल्की जो बौछार हुई है अभी कुछ दिनों में, उसकी वजह से बहुत हद तक चीज़ें ठीक हो गई है। तो देखो फरीदाबाद की गलियों से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अगले एक घंटे के लिए आप सभी के साथ जुड़ा हुआ हूं, शाम को दोबारा आऊंगा, डोंट वरी। बट अभी मैं बस इतना सा कहना चाहता हूं, देखो फरीदाबाद का मौसम अभी कुछ ऐसा है कि 27 से 28 डिग्री आपके घर के आसपास का टेम्परेचर हो सकता है। जहां पर अगर आप बात करें अरावली हिल्स वाले एरिया की, यहां पर टेम्परेचर 28 से 29 डिग्री जा रहा है। और वहीं पर अगर बात करूं मैं फरीदाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया की, तो यहां 30 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। तो चलिए इन सब चीजों के साथ साथ फरीदाबाद में क्या क्या हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में करेंगे बात, मगर थोड़ी देर बाद।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना।
2: कमाल तुम बेमिसाल, तुम लाजवाब हो आशा।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।
2: तुम जितनी कोशिश कर लो आशा, तुम सारा होगा कोई।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट

आप लोगों ने अभी रिसेंट एक वीडियो देखा, उसमें एक इंसान ट्रेन प्लेटफॉर्म पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन में एक लेडी को छोड़ने आया और वहां पर बाइक लेके पहुंच गया और फिर उसके बाद उसका चालान तो हुआ है, बट वो वहां तक पहुंचा कैसे पता नहीं कैसे पहुंचा। वैसे मैंने एक देखा था वीडियो में, दिख रहा है कि एक छोटा सा गेट है, गेट पे कड़ी लगी हुई है, कड़ी मीन्स खाने वाली कड़ी नहीं, चेन लगी हुई है, उसके नीचे से बाइक निकाल के ले जाया। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। गाने का नाम था दिल लगाना मना था और आई डोंट नो कि क्या था ये पूरा का पूरा सीन, मगर ट्रेन में बैठाने के लिए बाइक पर प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया आदमी। और देखो, रेलवे नियमों के अनुसार स्टेशन परिसर में किसी भी प्रकार के वाहन का प्रवेश प्रतिबंधित है, तो इसके ऊपर कार्रवाई ही हो सकती है। वैसे इस लड़के की बाइक का नंबर आ गया है और जब नंबर आ गया है तो फिर चालान तो होगा ही होगा और हो सकता है थोड़ी सी और कार्रवाई भी हो जाए। तो ये हुआ है अपने फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन पर। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन आप सभी को पता है भाई, इतना ज़्यादा टाइट रहती है सिक्योरिटी वहाँ पर, बट स्टिल आई डोंट नो कहाँ से वो बाइक लेकर आ गया। हैट्स ऑफ है, पहले तो इस बंदे को हैट्स ऑफ इसलिए बोल रहा हूँ सरकास्टिक वे में कि भाई आप वहाँ पर बाइक ले आए। और दूसरी चीज़, इनको देखकर प्लीज़ कोई भी इंसान इसको कॉपी करने की कोशिश ना करें, ये कूल बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो चलिए, अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, फरीदाबाद की गलियों से में हम लोग और भी बातें करेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक एसी को सर्विस नहीं करवाया तो करवा लीजिए। और यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ धोखाधड़ी की, क्योंकि एसी सर्विस के लिए उन्होंने कॉल किया मगर उनके साथ हो गई ऑलमोस्ट 98,000 रुपये की धोखाधड़ी। किसके साथ बताऊँगा पूरी बात मगर थोड़ी देर बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना जैकेट आ लाइटा वालियाँ, तो मेरी जैकेट है तो लाइटा वालियाँ नहीं है, मगर गाने का नाम है ये। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डेम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

ओए होए होए, मजा आ गया इस गाने को सुनकर, वो भी सुबह सुबह। देखो काफी सारे लोगों की अभी इस टाइम सुबह हो रही होगी। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। देखो आप लोगों ने, काफी सारे लोगों ने, मोस्टली कह सकते हैं 90% लोगों ने अभी तक एसी सर्विस तो जरूर करवा ली होगी। और यहाँ पर एसी अगर आप लोगों ने सर्विस नहीं करवाई है तो किसी ऑथराइज्ड इंसान से ही एसी को सर्विस करवाएं, किसी अननोन नंबर पर कॉल ना करें और किसी अननोन इंसान को अपने घर में घुसाने से भी बचें, परहेज करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शहर में साइबर ठगी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर एक रिसेंटली एक आदमी ने एसी सर्विस के लिए किसी को बुलाया था, बट उन्होंने लिंक भेजा और लिंक पर जैसे ही क्लिक किया तो 97,500 रुपये उनके अकाउंट से उड़ा दिए गए। ये अपने फरीदाबाद का ही मामला है, 26 अप्रैल का मामला है। और ऐसा बहुत बार होता है कि आप जब कहीं पर भी आप सर्च कर रहे हो, मान लेते हैं आप अपने फ़ोन में कुछ सर्च कर रहे हो एसी सर्विस वाली चीज़ें, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे गूगल पे जब आप सर्च करते हो। तो मान लेते हैं आपने एक वेबसाइट पर क्लिक किया जो आपको लग रहा है बिल्कुल लेजिट है, बिल्कुल असली वेबसाइट है, बट जैसे ही आपने क्लिक किया आपको नहीं पता कि ये नंबर आपका कहाँ कहाँ पहुँच चुका है। आपने अगर उधर नंबर डाला है, डिटेल्स डाली है, तो हो सकता है कि आपकी वो डिटेल्स कहाँ कहाँ पहुँच चुकी है ये आपको भी नहीं पता। तो इसके बारे में जरा सोचिए और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए खूब सारे गाने चलते रहेंगे और उन्हीं में से ये गाना, क्योंकि ये गाना कुछ है ही अमेजिंग। मनाली कैसे जाएंगे, सुनिए इस गाने को।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

इस गाने के साथ तो मजा सा ही आ गया। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। शो चल रहा है फरीदाबाद की गलियों से, और फरीदाबाद की गलियों से बहुत सारी अपडेट्स आई है, और इसमें मैं बात करना चाहता हूँ मौसम की, क्योंकि सोमवार की शाम से लेके मंगलवार की शाम तक मौसम बहुत ही अच्छा था, और अनुमान लगाया जा रहा है कि आज भी शाम होते होते मौसम थोड़ा सुहाना सा हो जाएगा, वो भी फरीदाबाद का। तो देखो, अगर अभी भी मौसम सुहाना सा लग रहा है आपको तो वेल एंड गुड है, बट जिनको लग रहा है कि गर्मी बढ़ जाएगी जल्दी, तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि जल्द ही फिर से बारिश हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में। कब होगी वो तो वक्त बता देगा, बट मौसम विभाग का कहना है कि अभी ये अनएक्सपेक्टेड बारिश का दौर चलता रहेगा। तो करेंगे इन सब चीजों के बारे में बात, मगर मेरे शो में, यानी कि मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ आएगा शाम को 5 से 8। तो देखो, अभी तो वक्त हो चुका है मेरा यहाँ से जाने का, मगर जाने से पहले मैं आप लोगों को दे रहा हूँ अपना नंबर। नंबर है जी 9654896896। अब आपको करना क्या है, आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज डाल देना है अगर आपको फरीदाबाद में किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी शिकायत या परेशानी है। तो नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9654896896। अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से, वापस आएगा मॉनिक विद फिल्मी फ्लेवर, फिल्मी टॉनिक आरजे मॉनिक आप सभी के साथ जुड़ेगा मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
1: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
2: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: दीपिका समांथा आलिया प्रियंका कैटरीना क्यारा सबकी खबर रखता है रेडियो महारानी का सांभा पूरे बॉलीवुड में नजर रखता है।

इसी खूबसूरत गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। और दोस्तों, आज सिनेमा के गलियारे में करने वाला हूँ बहुत ही चर्चा। कौन कौन सी नई कहानियाँ सिनेमा घरों में यानी कि सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज होने को है बिल्कुल तैयार। कहीं होंगी कहानियाँ सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज, तो कहीं होगी स्ट्रीमिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक्शन और धमाल के डबल डोज के साथ, तो कहीं होगा रोमांस और कॉमेडी का तड़का। इसी के साथ अगर चर्चा की जाए तो कहीं है नई जोड़ियों का आगाज, तो कहीं है डायरेक्टोरियल डेब्यू। साउथ इंडस्ट्री से लेकर पंजाबी सिनेमा तक के गाने और बॉलीवुड के गलियारों से लेकर के बताऊंगा सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड की

0: अपना KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी प्लेयर। यहाँ दोस्तों हम बात करते हैं अक्षय कुमार और साफ स्टारक कहानी हैवान के बारे में, जो कि मोहनलाल की 2016 की ओपन पर बेस्ड कहानी, जो कि मलयालम थ्रिलर सुपरहिट कहानी रही थी, जिस कहानी का डायरेक्टर थे प्रियदर्शन। और बात की जाए यहाँ पे मोहनलाल ने कैसे शख्स की भूमिका निभाई जिनको दिखाई नहीं देता, लेकिन सुपर शार्प सेंसर्स वाले शख्स की भूमिका निभाते हुए नजर आए। बात की जाए अब कहानी के बारे में, जो कि हवान भी प्रियदर्शन ही लेकर के आ रहे, जब सैफ उसी तरह के विजुअली इंस्पायर्ड किरदार को निभाएंगे जैसा मोहनलाल ने ओपन में निभाया। जहां रोहन शंकर ने बताया कि इस किरदार को लिखना उनके लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उन्हें डायलॉग, फोकस, जगह, साउंड इफेक्ट और सेंसरी डिटेल्स पर ज्यादा फोकस करना था। अक्षय कुमार फिल्म में एक विलन के किरदार में रखने वाले हैं, जहां एक्टर स्टार का एक नया और डेंजर एनर्जी वाला अवतार सबके सामने होगा। तो इंतजार है इस कहानी की रिलीजिंग का, जहां पे मोहनलाल का भी एक कैमियो किरदार यानी कि स्पेशल रोल नजर आ सकता है। बाकी ऐसी भी चर्चा करूंगा।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी प्ले। अब बात करते हैं अल्लू अर्जुन की अपनी मील स्टोन या कि 25वीं फिल्म के लिए मलयालम फिल्म मेकर बिसल जोसफ के साथ काम करने की अनाउंसमेंट तय कर चुके हैं, जिस प्रोजेक्ट को अभी टेंटेटिव टाइटल EA25 बताया जा रहा है। बात करें यहाँ पे इस कहानी के बारे में तो फिल्म की शूटिंग नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने की उम्मीद की जा रही है। अल्लू अर्जुन के लिए पहला कोलैब होगा जब वो मलयालम प्रो क्रिएटर बिसल जोसफ के साथ नजर आने वाले हैं। अब बात करें इस कहानी के बारे में, कहानी में क्या कुछ होने वाला है इसके बारे में ज्यादा अंदाजा तो इतना जरूर कहा जा रहा है कि क्रिएटिव स्टाइल नैरेटिव और मिनल मुराली जैसे फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं जो मेकर अब अल्लू अर्जुन का मूवी ला रहे हैं तो कुछ धमाकेदार ही। इसके साथ ही अल्लू अर्जुन और भी कई कहानियां हमारे सामने आएंगी जैसे कि 002 जैसी कहानी और साथ ही साउथ के मसल मसाला अल्लू अर्जुन और मलयालम की नई वेब क्रिएटिव डायरेक्टर बेसिल के साथ क्या प्रोजेक्ट होगा इसका इंतजार फैन सबसे ज्यादा करेंगे। बाकी ऐसी चर्चा करूंगा।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इरशाद,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आज

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: अगर आप जीमेल, आउटलुक या याहू मेल जैसे ईमेल प्रोवाइडर्स यूज करते हो तो सावधान रहो। स्कैमर्स का तो आसान है, बस ईमेल भेजा, आपने असली मानकर अपनी डिटेल्स दे दिए और यूं ही पैसे गए। बट सस्पिशियस लिंक्स, अननोन सेंडर्स और अनकंफर्म नोटिसेस से दूर रहो।

वेलकम बैक है शो में जिसका नाम है फिल्मी फ्लेवर और फिल्मी टॉनिक आरजे बॉय। यहाँ हम बात करते हैं कांतारा से चर्चा में आया एक्ट्रेस सप्तमी गौड़ा अब श्री मुरली की बड़े प्रोजेक्ट एक्शन ड्रामा उग्र युद्धम में उनके सामने फीमेल लीड तौर पर दिखे। जी हाँ, जो उनकी और श्री मुरली के लिए एक नई तरह की जोड़ी बन सकती है। उग्र युद्धम एक लार्ज स्केल पीरियड एक्शन ड्रामा है जो लगभग 500 साल पहले के हिस्ट्री पर बेस्ड होने वाली और हिस्टोरिकल एलिमेंट्स को सिनेमैटिक फैंटेसी स्टाइल से मिलता जुलता कुछ कॉन्सेप्ट के सामने। फिल्म को पुनीत रुद्रनाथ डायरेक्ट करने वाले हैं जो इसे अपना डायरेक्ट डेब्यू मान रहे हैं और जयराम द्विवेदी इसे बेहतरीन तरीके सबके सामने लेकर के आएंगे। अब देखें कि सप्तमी गौड़ा और श्री मुरली की भूमिका को लोग कितना ज़्यादा पसंद करने वाले इस लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में। इसके अलावा सप्तमी एक और फिल्म हालांकि में काम कर रही है जो धनंजय और डायरेक्टर सुकेश नायक के साथ होने वाली। इंतजार रहेगा इन कहानी के लिए।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
2: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
0: हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

वेलकम बैक हमारे शो में यानी कि फिल्मी फ्लेवर। और दोस्तों अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, मैं एक्टर नहीं हूँ। आप सोच रहे हो मैं एक्टर नहीं कौन क्या किस लिए कहा जा रहा है। एक्चुअली ये आने वाली फिल्म का नाम है जिसमें हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, चित्रांगदा और आदित्य कृपलानी नजर आने वाले हैं। जी हाँ, बात की जाए इस कहानी के बारे में तो कुछ यूनिक सा नाम सबके सामने आया है जो कि सेटबैक स्टोरी और एक्टर ईगो पर बेस्ड कहानी होने वाली, जहाँ ड्रामा होगा और इस कहानी में बेहतरीन तरीके से स्टार्स अपने किरदारों को निभाते नजर आई। शायद एक छोटे स्टार या ओवर स्टेचर्ड अभिनेता की कहानी पर फोकस ये कहानी बताई जा रही है। उनका टीजर लाइट हार्टेड टोन में है, लेकिन इंडस्ट्री कॉमेडी और इमोशनल ट्रेजेडी दोनों की झलक दिखती नजर आ रही है इस कहानी में। कास्ट में आपको बता ही चुका हूँ, जहाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो एक अक्सर इंटेंस डार्क जोरदार किरदार में नजर आते हैं, और चित्रांगदा सिंह जो अपने ग्लैमर और ड्रामा दोनों के लिए काफी मजबूत। इनके साथ साथ आदित्य की बात की जाए तो जिनकी थिएटर टाइप एनर्जी फिल्म में फ्रेश टच देने को तैयार रही। देखते हैं इस कहानी में क्या कुछ धमाकेदार सबके सामने आएगा, और कुछ यूनिक या फिर कह लीजिए इंडस्ट्री कुछ ऐसी चर्चाएं सबके सामने आने वाली हैं जिसको जानना शायद हर कोई चाह रहा। बाकी ऐसी चर्चा करो उससे पहले कॉन्टैक्ट

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टैक्स, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम है। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, लौट आया हूँ लेकर के शो फिल्मी फ्लेवर। मैं फिल्मेटॉनिक आरजी बॉल। बात करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री की नहीं कहानी कप्तान के बारे में, जो कि हिंदी वेब सीरीज जिसका ट्रेलर लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, जो एक ग्रिडी क्राइम थ्रिलर कहानी जिसमें दो युवा सेंसिटिव एक्टर साकिब और सिद्धार्थ आपस में टकराते दिख रहे। एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर जो काल्पनिक शहर ज्वालाबाद की गैंग वॉर और राजनीति अपराध दुनिया पर आधारित है, जो एक तरफ सिद्धार्थ निगम के रूप में नए जनरेशन गैंगस्टर किरदार पर फोकस है, तो दूसरी तरफ साकिब के हीरो सुपरस्टार पुलिस ऑफिसर रोल में नजर आएंगे। ट्रेलर में एक्शन, गनफायर, गैंगवॉर और डार्क इमोशनल वाइब के बीच दोनों किरदार टक्कर लेते नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं जहां इस कहानी में दो बढ़िया स्टार एक साथ नजर आएंगे, जहां के अलावा अंजुम शर्मा, वरुण बड़ौला, विक्रम कोचर और इंतजार जैसी खत्म हुआ जतिन वागले के डायरेक्शन बनी इस कहानी का, इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया गया है। फैंस कहानी को पसंद कर रहे हैं, देखना ही होगा इस कहानी को कितना ज्यादा पसंद किया जाएगा, क्या व्यूअरशिप मिलने वाली, इसके लिए करना होगा कुछ इंतजार। बाकी सुंदर

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

एक बार फिर से लौट आया हूँ फिल्म अधिकार से मॉर्निंग लेकर के शो फिल्मी क्लियर। यहाँ पर बातें करते हैं नितिन कक्कड़ के डायरेक्शन में बन रही आवारापन की सीक्वल, इसकी फाइनल ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जा चुकी है। 15 अगस्त 2026 को कहानी को सिनेमाघर में उतारा जाने वाला। जहाँ बात की जाए तो यहाँ पे दिशा नजर आने वाली है इस बार फीमेल लीड किरदार में, जहाँ इमरान और दिशा की जोड़ी को लोग कितना पसंद करने वाले इसका इंतजार बेसब्री से चल रहा है। एक ऐसी रोमांटिक लव स्टोरी जिसकी शायद स्क्रीन काफी लंबे से इंतजार कर रही थी खुद भी कि भाई कुछ बेहतरीन लव स्टोरी आने का इंतजार फाइनली अब खत्म हो चुका। लेकिन आवारापन का सीक्वल क्या धमाल मचाएगा सिल्वर स्क्रीन पर, कहानी के साथ साथ गानों का हमेशा से धमाल भी रहा है। देखते हैं आवारापन के गाने क्या क्रिस्प लाएंगे, स्टोरी क्या क्रिस्प लाएगी और दोनों की जोड़ी को कितना पसंद किया जाने वाला है रहेगा इंतजार। बाकी ऐसे ही और भी चर्चाएं सिनेमा के गलियारों से।

0: गलियारों में विदार शेख बहुत की आप बात करते हैं दोस्तों, हम फिल्मी गलियारों में स्टार्स एक्टिंग का तो अच्छा खासा कमाल दिखाते नजर आ रहे हैं। वह इंडस्ट्री में कुछ स्टार्स या कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं जो कि इंडस्ट्री में रह कर के साथ साथ बिजनेस वूमेन बनती हुई नजर आई, जहाँ सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा प्रियंका चोपड़ा, जहाँ एनोमली हेयर केयर नाम का एक ब्रांड रन करती नजर आ रही है। प्रियंका उसको अच्छा खासा प्यार मिल रहा, फैंस इस प्रोडक्ट को पसंद कर। वहीं न्यूयॉर्क में भारतीय थीम बेस्ड रेस्टोरेंट सोना और सोना होम जैसे आउटलेट्स भी रन करती नजर आ रही है। साथ ही अपना पिक्चर प्रोडक्शन पर्पल पेबल भी इन्हीं के नाम। बात करें आलिया भट्ट की, तो उन्होंने बच्चों और माता पिता के लिए बनी एक बेहतरीन फैशन ब्रांड एड आ ममा लॉन्च की, जो नेचुरल फैब्रिक और प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग और माइंडफुल डिजाइन बाद में बात की जाए, जिसे एक और ब्रांड लाती नजर आई। आलिया यूनिवर्स इन्वेस्टर भी है, जहां उन्होंने ब्यूटी डी कॉमर्स नायका में जल्दी दिन में स्टेक लिया और फॉलकॉट डॉट को में भी इन्वेस्ट करती नजर आ रही है। इंडस्ट्री में तो कदम जमाए जमाए बिजनेस वुमेन बनते हुए लोगों की बेस्ट प्रोडक्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ लोगों के दिलों पर छा जाने वाले से ब्रांड्स लॉन्च किए, जिनकी खुद ही ओनर भी हैं।
1: यारो मुझे मुआफ करो, यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम, पी लीजिए हमारे हाथ से दो चार जाम, पी लीजिए। पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब, फिर नहीं।

दादाजी ने हम कहीं कहू छू के वहा फरे वादल फरे ने वायरो फरे पण एक वार बोलया पछी मारा मित्रों आ मित्रों कदी ना फरे के हाँ।

0: शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

वेलकम बैक हमारे शो में यानी कि फिल्मी प्लेयो। अब वक्त हो चला है यहाँ पे आज के कलंदर का। जी हाँ, सिनेमा के कलेटक बात करने वाला हूँ आज में 70 के दशक की ऐसी कहानी के बारे में जहाँ फिल्म का नाम एक जर्नी से जुड़ा, इसमें रोमांस और सस्पेंस भरपूर मात्रा में मिलता नजर आ। सुपरस्टार राजेश खन्ना का चार्म इस फिल्म की जान रहा था। अब इतने सारे हिंट बता चुका हूँ तो थोड़ा सा काम तो आपका भी बनता है दोस्तों। गेस कीजिए कौन सी है ये कहानी, जैसे कहानी में हमें राजेश खन्ना साहब भी दिखाई दी और कहानी एक जर्नी से स्टार्ट होती नजर आ रही है, जिसमें बात की जाए ना सिर्फ स्टार का बल्कि इसके गानों स्टोरी लाइन भी अच्छी खासी पकड़ बनाई थी, अच्छा खासा राज किया था लोगों के दिलों पर, जिसने सिल्वर स्क्रीन को एक बार ये कहने को मजबूर कर दिया बॉस ये हाउसफुल है यार, कल आना कल आना कल आना। इतनी बेहतरीन कहानी रही थी, कौन सी है बताऊंगा, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद अब तक आप जरा सोचिए, दिमाग पर डालिए थोड़ा सा जोर और गेस कीजिए कौन सी है ये कहानी। बाकी चर्चा करता हूँ।

वेलकम बैक है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ हम बात कर रहे थे सिनेमा के कलंदर में ऐसी कहानी के बारे में, इसका नाम एक जर्नी से स्टार्ट हुआ। जर्नी थी द ट्री। 10 अप्रैल 1970 को इस कहानी को रिलीज किया गया था, जहाँ राजेश खन्ना, जिनका चांप उस टाइम पर पीक पर था और कहानी में उनका नजर आना ही अपने आप ही बड़ी बात, उनके साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर करती नंदा ने, जिन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी और ग्रेस से ऑडियंस का दिल जीत लिया। 70 का वो टाइम जब राजेश खन्ना का नाम ही फिल्म हिट होने के लिए गारंटी माना जाता था। नाम जुड़ गया था इनका, सिंप्लिसिटी थी नंदा की, और बात की जाए डायरेक्शन और स्टोरी लाइन को मेकर ने इतने बेहतरीन तरीके से लिखा था, इतने बेहतरीन तरीके से सजाया था कि इस कहानी को ना पसंद कर दे कोई, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। कहानी रेसिंग के बाद से हर किसी के जबान पर एक ही नाम, द ट्रेन। देखी क्या? नहीं देखी? देखो यार, बहुत ही बढ़िया स्टोरी और एक ऐसी कहानी जहाँ पे स्टार्स ने उस किरदार को जिया। जी हाँ, ये बात खुद

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

सिनेमा के कैलेंडर में फिल्मी गुंडा यानी कि आरजू मौनी एक बार फिर से आप सबके सामने आ चुका है। बात करते हैं इसी कहानी यानी कि द ट्रेन की जर्नी में कुछ ऐसे गाना भी था जिसको आज तक लोग सुनना पसंद करते हैं। द ट्रेन के गाने तो आज भी एवरग्रीन है। आप सब को बताऊं कि गुलाबी आंखें जो तेरी देखी एक ऐसा गाना जो आज भी पार्टीज और प्लेलिस्ट में छाया रहता है और सोशल मीडिया पर रील्स में भी गुलाबी आंखें जो तेरी देखी बना रहा। ये गाना तब से लेके आज तक लोगों का वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग। मेलोडी रोमांस और किशोर दा की आवाज बस दिल जीत ही लेती है। राजेश खन्ना साहब की एक्टिंग, किशोर दा की आवाज तो बस मूवी तो हिट नहीं थी और गाना तो एवरग्रीन बनना ही था और बना हुआ है दोस्तों। ये गाना तब से लेके आज तक और आज से आने वाले ना जाने कितने ही सालों तक ये गाना लोगों की जुबान पर टिका रहने वाला है। प्लेलिस्ट में एवरग्रीन रोमांटिक गाना ये इंक्लूडेड रहेगा ही। बाकी ऐसे भी चर्चा करेंगे उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है 3 यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

वेलकम बैक है मेरे शो में, यानी कि फिल्म डॉनी का आर्ट शो मॉनिका। दोस्तों, आज हमने सिनेमा के कैलेंडर में बात करी द ट्रेन कहानी के बारे में, जो कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही और अपनी सॉन्ग्स की वजह से आज भी याद की जाती है। फेवरेट स्टार राजेश खन्ना, गाना बेहतरीन, और हमें जरूर बताइएगा व्हाट्सएप नंबर 9654896896 पर कि फिल्मी फ्लेवर के सिनेमा के कैलेंडर डोज में आपको अपनी वन ऑफ फेवरेट कहानियां, गानियां, स्टार्स के बारे में जानकर कितना अच्छा है। बाकी ऐसी और भी चर्चाएं लाता रहूंगा सिनेमा के गलियारों से, लेकिन आज अब यहां से वक्त हो चला है जाने का। आपसे फिर मुलाकात होगी सिल्वर स्क्रीन की कुछ नई कहानियों के साथ, और प्लेटफॉर्म की स्ट्रीमिंग वेब सीरीज के साथ, कुछ नई जोड़ियों के साथ, लेकिन मन लगे। तब तक चलता हूँ, सुनते रहे रेडियो महारानी।

सड़क पे चलते समय सबसे पहले सुरक्षा के बारे में सोचें। आपका कहीं जल्दी पहुंचने से ज्यादा जरूरी है आपका घर सही सलामत पहुंचना। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेद एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वार्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वार्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी, वार्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

0: बन्नो की सहेली से लेकर दीदी का दीवाना देवर पूरे सिनेमा की अपडेट मिलेगी ओनली इन फिल्मी फ्लेवर।
1: बंदा है ये खुद से बेगाना, अजी बंदा है ये खुद से बेगाना।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है,
2: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ स्टूडियो में मैंने दस्तक दे दी है। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड, जहाँ मैं सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं सुनाती हूँ बल्कि डिकोड करती हूँ विजन, रिस्क और मैडनेस को। और आज की स्टोरी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, ये स्टोरी है बिलीव की, ये स्टोरी है उन दो यंग लोगों की जिन्हें लोगों ने बोला इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग इम्पॉसिबल। और आज हम जिस प्लेटफॉर्म से फोन, कपड़े, फ्रिज, मेकअप, बुक सब ऑर्डर करते हैं, कभी वो सिर्फ एक छोटा सा आइडिया था। सोचो 2007 का इंडिया, न लोग ऑनलाइन पेमेंट पर ट्रस्ट करते थे, न लोग कार्ड डिटेल्स देना चाहते थे, न डिलीवरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, फिर भी किसी ने डिसाइड किया इंडिया रेडी है, बस किसी को पहला स्टेप लेना होगा। इन्होंने जॉब छोड़ी, इन्होंने सैलरी छोड़ी, इन्होंने कंफर्ट जोन छोड़ा और एक छोटे से ऑफिस में एक वेबसाइट बनानी शुरू कर दी। आज वो कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स रेवोल्यूशन का नाम है। लेकिन कौन थे वो दो लोग, कहां से आए थे और कैसे इन्होंने जीरो ट्रस्ट वाले मार्केट में बिलियन डॉलर ट्रस्ट क्रिएट किया, नाम मैं अभी नहीं बताऊंगी। पहले गाना सुनते हैं, गाने के बाद मैं फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है बिजनेस अनप्लग्ड, और मैं बात कर रही थी 2007 के इंडिया के बारे में, जहां दो यंग लोगों ने डिसाइड किया कि इंडिया ऑनलाइन शॉपिंग करेगा, चाहे लोग हंसे, मना करें या ट्रस्ट ना करें। और अब वक्त है नाम को रिवील करने का। वो दो लोग थे सचिन बंसल और विनी बंसल, और जिस कंपनी की बात मैं कर रही हूँ वो है फ्लिपकार्ट। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज बोलना चाहूंगी, आज हम फ्लिपकार्ट को देखते हैं, फ्लैशी एड्स, बिग बिलियन डे, करोड़ के डील्स, बट रिमाइंड टू 2007, नो हाइप, नो फंडिंग राउंड्स, नो मीडिया स्पॉटलाइट, बस एक छोटा सा ऑफिस, दो लैपटॉप्स और एक ड्रीम। एट दैट टाइम इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट थी। लोग बोलते थे ऑनलाइन पैसा देना, आर यू सीरियस? और सच कहूँ लोग गलत भी नहीं थे। डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर वीक था, इंटरनेट स्लो था और ट्रस्ट जीरो था, बट विजन क्लियर था। सचिन और बिनी ने डिसाइड किया, लेट्स स्टार्ट स्मॉल, लेट्स स्टार्ट स्मार्ट। इसीलिए इन्होंने शुरुआत की बुक्स से। व्हाई बुक्स? बिकॉज बुक्स आर प्रेडिक्टेबल, नो साइज इश्यूज, नो फिटिंग इश्यूज, नो रिटर्न ड्रामा, स्मार्ट थिंकिंग, राइट? इन्होंने वेबसाइट बनाई, कोडिंग की, लिस्टिंग डाली और फिर वेट किया फर्स्ट ऑर्डर का। इमेजिन दैट मोमेंट, स्क्रीन के सामने बैठकर रिफ्रेश करना, कोई ऑर्डर आए तो नोटिफिकेशन आए, और जब फर्स्ट ऑर्डर आया तो वो फीलिंग क्या रही होगी? एक्साइटमेंट, फियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर रियलिटी हिट। ऑर्डर आ रहे थे बट बहुत स्लो, कभी दिन भर एक भी ऑर्डर नहीं। और तब क्या करते थे फाउंडर्स? They did everything themselves. Customer care, Sachin. Packaging, Vinny. Delivery, sometimes they themselves. Yes, founders delivering books. ये ग्लैमरस स्टार्टअप स्टोरी नहीं थी, दिस वॉज ग्राउंड लेवल हसल। अब यहाँ पर मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी, एक कस्टमर ने बुक ऑर्डर की, गलती से वो बुक किसी और को डिलीवर हो गई, कंप्लेन आई। ये मोमेंट बिजनेस को तोड़ भी सकता था, बट इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग इन्होंने कहा सिस्टम इम्प्रूव करना पड़ेगा, दैट्स लीडरशिप। मिस्टेक को इग्नोर नहीं, अपग्रेड में कन्वर्ट करना। इन्होंने टेक इम्प्रूव किया, ऑर्डर ट्रैकिंग बेटर बनाया, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया, और स्लोली ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हुआ। और सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल अभी बाकी था, इंडिया के लोग कार्ड से पेमेंट नहीं करना चाहते थे। सोचो अगर कस्टमर पे ही नहीं करेगा तो ऑनलाइन बिजनेस कैसे चलेगा? यहीं पर हुआ एक गेम चेंजिंग थॉट, लेकिन उस थॉट तक पहुंचने के लिए इन्होंने अपना कंफर्ट जोन भी तोड़ा, और वो डिसीजन इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। कैसे और क्या था वो मास्टर स्ट्रोक, ये मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल करो।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है बिजनेस अनप्लग्ड, और मैं एक स्टोरी को आज अनप्लग्ड कर रही हूँ। ये है फ्लिपकार्ट की स्टोरी। नाम तो रिवील हो गए हैं, सचिन बंसल और बिनी बंसल, जो इस स्टोरी के मास्टरमाइंड्स हैं। बट किसी भी सक्सेस स्टोरी को समझने के लिए हमें उस बैकग्राउंड में उतरना पड़ता है, बिकॉज बिजनेसेस डोंट स्टार्ट इन ऑफिसेस, दे स्टार्ट इन माइंड्स। सचिन और बिनी दोनों टिपिकल फाइनेंशियल क्लास फैमिलीज से आए थे। डिसिप्लिन अपब्रिंगिंग, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, रिस्क लेने का कल्चर नॉट रियल। मिडिल क्लास फैमिलीज में एक फॉर्मूला होता है, पढ़ो, अच्छी जॉब लो, सिक्योर फ्यूचर बनाओ, और इन्होंने वही किया। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड, कॉर्पोरेट जॉब, स्टेबल सैलरी, एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड। बट यही एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, कुछ लोग कम्फर्ट में भी अनकम्फर्टेबल होते हैं। इनसाइड देम एक कॉन्स्टेंट वॉइस होती है, देयर हैज टू बी समथिंग बिगर। कॉर्पोरेट लाइफ सेफ थी, बट सेफ लाइफ एक्साइटिंग नहीं थी। और फिर एक ऑब्जर्वेशन ने इनका डायरेक्शन चेंज कर दिया। वो देख रहे थे ग्लोबल ट्रेंड्स। यूएस में ऑनलाइन शॉपिंग ग्रो कर रही थी, लोग अमेजोन से बुक ऑर्डर कर रहे थे, और इंडिया पॉपुलेशन ह्यूज, यूथ रिस्किंग, इंटरनेट स्लोली स्प्रेड हो रहा था, पोटेंशियल मैसिव लेकिन एग्जीक्यूशन जीरो। यहीं से थॉट आया, व्हाई नॉट बिल्ड इंडियाज ओन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। नाउ इमेजिन, आप घर जाकर फैमिली को बोलते हो, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, वेबसाइट बनाऊंगा। साइलेंस, कंसर्न, डाउट, टिपिकल रिएक्शन। बेटा रिस्क मत लो, बट एंटरप्रेन्योरशिप कभी भी 100% क्लैरिटी के साथ स्टार्ट नहीं होता, इट स्टार्ट विद कन्विक्शन। इन्होंने जॉब छोड़ी, छोटा सा ऑफिस लिया, बेसिक फर्नीचर, लिमिटेड रिसोर्सेज, और शुरू हुई कोडिंग। वेबसाइट का नाम डिसाइड हुआ फ्लिपकार्ट। कोई फैंसी लॉन्च इवेंट नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस एक लाइव वेबसाइट, और फिर वेटिंग। पहले कुछ वीक साइलेंस, ट्रैफिक लो, ऑर्डर्स रेयर, कभी कभी डाउट आता होगा, डिड वी मेक अ मिस्टेक, बट डिफरेंस यही था, इन्होंने क्विट नहीं किया, इंस्टेड दे एनालाइज्ड। इन्होंने देखा लोग बुक्स ऑनलाइन खरीदने में रिलेटिवली कंफर्टेबल हैं, इसीलिए फोकस सिर्फ बुक्स पर रखा गया। नीश कैटेगरी, कंट्रोल इन्वेंट्री, मैनेजेबल लॉजिस्टिक, स्मार्ट स्टार्ट। लेकिन एक और रियलिटी थी, इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन लो था, लोग स्लो कनेक्शंस पर ब्राउज करते थे, वेबसाइट अगर हैवी हो जाए तो लोड नहीं होती थी। तो इन्होंने साइट सिंपल रखी, लाइट डिजाइन, इजी नेविगेशन, कस्टमर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दी, बिकॉज इनको पता था इफ द फर्स्ट एक्सपीरियंस गोज रॉन्ग द कस्टमर नेवर कम्स बैक। और फिर एक दिन ऑर्डर वॉल्यूम थोड़ा स्टेडी होने लगा, कॉन्फिडेंस ग्रो हुआ, बट साथ ही प्रेशर भी। हर ऑर्डर एक टेस्ट था, डिलीवरी लेट हुई तो ट्रस्ट गया, प्रोडक्ट गलत हुआ तो रेपुटेशन गया, और फिर वो एक इंसिडेंट जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, बुक गलत कस्टमर को डिलीवर हो गई। अ स्मॉल मिस्टेक, बट इन स्टार्टअप स्मॉल मिस्टेक्स लुक बिग। कस्टमर एंग्री, कंप्लेन स्ट्रॉन्ग, और यहाँ फाउंडर पैनिक कर सकते थे, बट इसकी बजाय इन्होंने टीम मीटिंग बुलाई। इन्होंने बोला, इफ वी वांट टू स्केल वी नीड सिस्टम्स नॉट जुगाड़। ये टर्निंग माइंडसेट था, फ्रॉम सर्वाइवल टू स्केल थिंकिंग। लेकिन सबसे बड़ा बैरियर अभी भी खड़ा था, ऑनलाइन पेमेंट का फियर। लोग कार्ड डिटेल्स देने से डरते थे, फ्रॉड का डर, सिक्योरिटी का डर, और जब तक पेमेंट ट्रस्ट सॉल्व नहीं होता, ग्रोथ लिमिटेड रहने वाली थी। तो क्या इन्होंने वेट किया मार्केट मैच्योर होने का? नो, दे डिसाइडेड टू चेंज द मार्केट, और वो डिसीजन इंडिया ई कॉमर्स हिस्ट्री का गेम चेंजर बना। क्या था वो स्टेप, कैसे बना इनका बिगेस्ट एडवांटेज, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। गाना सुन लेते हैं, गाने के बाद मैं फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

ईश्वर, हम माफी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा आपसे ज्यादा और ज्यादा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

वेलकम अगेन, मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही हूं फ्लिपकार्ट के बारे में, जहां सचिन बंसल और बिनी बंसल वेबसाइट बना चुके थे, ऑर्डर्स आ रहे थे, लेकिन ग्रोथ अभी भी लिमिटेड थी बिकॉज इंडिया रेडी नहीं था। सबसे बड़ा बैरियर ट्रस्ट। लोग बोलते थे ऑनलाइन पैसे दिए और प्रोडक्ट नहीं आया तो, और यही आया वो डिसीजन जिसने इंडिया ई कॉमर्स का DNA चेंज कर दिया, कैश ऑन डिलीवरी। यस, सिंपल सा आइडिया बट रिवोल्यूशनरी। फ्लिपकार्ट ने बोला प्रोडक्ट घर आए तब पैसे दे देना। सडनली लोग कंफर्टेबल होने लगे, मिडिल क्लास हाउसहोल्ड्स में डिस्कशंस होने लगा, अच्छा पहले प्रोडक्ट देख लेंगे फिर पैसे देंगे। ऑर्डर स्पाइक होने लगे, लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी। COD का मतलब था लॉजिस्टिक स्ट्रांग होना चाहिए, डिलीवरी नेटवर्क रिलायबल होना चाहिए, रिटर्न्स हैंडल करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और यहीं से स्टार्ट हुआ रियल स्ट्रगल फेज। टीम बिल्ड करनी थी। अब सिर्फ दो फाउंडर्स का काम नहीं था, डेवलपर्स हायर हुए, वेयरहाउस स्टाफ हायर हुआ, डिलीवरी पार्टनर्स ऑन बोर्ड हुए, कल्चर बिल्ड करना था। और कल्चर सिंपल था, कस्टमर फर्स्ट। हर कंप्लेन सीरियसली ली जाती थी, हर डिले एनालाइज होता था बिकॉज उनको पता था ट्रस्ट एक बार टूट गया तो मार्केट वापस नहीं आती। फिर आया एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट, बिग बिलियन डे। इंडिया में पहली बार किसी ऑनलाइन कंपनी ने इतना एग्रेसिव मेगा सेल अनाउंस किया। मार्केटिंग लाउड थी, ऑफर्स क्रेजी थे, एक्साइटमेंट हाई हुई, और जब सेल स्टार्ट हुई वेबसाइट पर लाखों लोग एक साथ, ट्रैफिक एक्सप्लोड, ऑर्डर्स फ्लड, और फिर वेबसाइट क्रैश। यस, सर्वर्स हैंडल नहीं कर पाए, क्रिटिसिज्म शुरू, सोशल मीडिया पर मीम्स, न्यूज हेडलाइंस नेगेटिव, कॉम्पिटिटर्स हंस रहे थे। ये वो मोमेंट था जहां एक कंपनी टूट भी सकती थी। बट हियर इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज फाउंडर्स एंड विजनियर्स। इन्होंने हाइड नहीं किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया, यस वी अंडर एस्टिमेट द डिमांड, और नेक्स्ट ईयर बेटर सर्विसेज, बेटर टेक टीम, बेटर प्लानिंग, बिग बिलियन डे वापस आया, और इस बार कंट्रोल्स की ओर सेल्स सक्सेसफुल, और धीरे धीरे बिग बिलियन डे बन गया इंडिया का शॉपिंग फेस्टिवल। लोग वेट करते थे, विश लिस्ट बनाते थे, बजट सेव करते थे। फ्लिपकार्ट सिर्फ एक वेबसाइट नहीं रहा, इट बिकम अ हैबिट। लेकिन एक और साइलेंट स्ट्रगल चल रहा था, फंडिंग। स्केल करने के लिए पैसा चाहिए, वेयर हाउस, टेक, मार्केटिंग सब कॉस्टली। इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना इजी नहीं था, क्वेश्चन सिंपल था, इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग कब प्रॉफिटेबल होगी। और यहाँ फाउंडर्स को प्रूव करना था कि ये सिर्फ ट्रेंड नहीं है, लॉन्ग टर्म शिफ्ट है। कैसे कन्विंस किया इन्वेस्टर्स को, कैसे कंपनी बिग बिलियन डॉलर वैल्यूएशन तक पहुंची, तो बताऊंगी आपको। लेकिन गाने के बाद, गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

बातें चलती रहेंगी। मैं फिर से हाजिर हूँ, शो है बिजनेस अनप्लग्ड। और आज बिजनेस अनप्लग्ड पर मैं सिर्फ एक कंपनी की ग्रोथ नहीं बल्कि एक माइंडसेट का एवोल्यूशन देख रही हूँ। एक छोटे से ऑफिस से शुरू हुआ सफर आज एक मैसिव इकोसिस्टम बन चुका है। फ्लिपकार्ट सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, इट इज अ बिहेवियरल शिफ्ट। वेयर हाउसेज मल्टीपल सिटीज में, डिलीवरी नेटवर्क देश के कोने कोने तक, लैक्स ऑफ सेलर्स, मिलियंस ऑफ कस्टमर्स, टर्नओवर हजारों करोड़ तक पहुंच गया है, वैल्यूएशन बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर गया है। और फिर वो हिस्टोरिक मोमेंट जब ग्लोबल रिटेल जायंट वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किया। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट दैट इंडियन स्टार्टअप्स आर नॉट एक्सपेरिमेंट्स एनीमोर, दे आर सीरियस ग्लोबल प्लेयर्स। लेकिन यहाँ एक ऑनेस्ट बात मैं बोलना चाहूंगी, जब आप हेडलाइंस देखते हो बिलियन डॉलर वैल्यूएशन, मैसिव सेल डे, तो आपको सिर्फ सक्सेस दिखती है, पर उन हेडलाइंस के पीछे क्या था? लेट नाइट, सर्वर क्रैशेस, एंग्री कस्टमर्स, कैश फ्लो स्ट्रेस, इन्वेस्टर्स के टफ क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ डाउट। हर एंटरप्रेन्योर की लाइफ में एक फेज आता है जब वो क्वाइटली सोचता होगा, एम आई डूइंग द राइट थिंग। डिफरेंस बस इतना होता है, कुछ लोग डाउट के बाद रुक जाते हैं और कुछ लोग डाउट के बाद और डिसिप्लिन हो जाते हैं। सचिन बंसल और बिनी बंसल ने मार्केट का वेट नहीं किया मैच्योर होने का, बल्कि इन्होंने मार्केट को मैच्योर किया। कैश ऑन डिलीवरी इंट्रोड्यूस बिकॉज कस्टमर्स वेर नॉट रेडी फॉर ऑनलाइन पेमेंट। बिग बिलियन डे क्रैश हुआ, बट दे केम बैक स्ट्रॉन्गर। टीम बिल्ड की, सिस्टम्स बनाए, ट्रस्ट को करेंसी बनाया। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट लेसन यही था, स्टार्ट स्मॉल बट थिंक स्केल। बुक से शुरू हुआ प्लेटफॉर्म आज इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ग्रोसरी सब सेल करता है। अगर आज कोई यंग एंटरप्रेन्योर मुझे सुन रहा है तो याद रखिए, परफेक्ट टाइमिंग का वेट मत कीजिए, परफेक्ट आइडिया का ऑब्सेशन मत रखिए, परफेक्ट फंडिंग को एक्सक्यूज मत बनाइए। क्लैरिटी इम्परफेक्ट होती है, एग्जीक्यूशन परफेक्ट बनाया जाता है। इंडिया आज भी अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है, प्रॉब्लम्स हर जगह है और जहाँ प्रॉब्लम है वहीं बिजनेस है। बट एक चीज कंपलसरी है, कस्टमर ऑब्सेशन, बिकॉज एंड में ब्रांड नहीं जीतता, ट्रस्ट जीतता है। और हर एम्पायर की फाउंडेशन ट्रस्ट पर टिकती है। मैं हूँ गीत और ये है हमारा आज का एपिसोड बिजनेस अनप्लग्ड। रिमेम्बर, बिग बिजनेसेस स्टार्ट्स इन स्मॉल रूम्स और नेक्स्ट बिग स्टोरी शायद किसी और छोटे रूम में लिखी जा रही होगी। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

क्या कभी सोचा है आज हम एक स्विच दबाते हैं और घर रोशनी से भर जाता है। लेकिन एक वक्त था जब रात का मतलब होता था गहरा अंधेरा, और उस अंधेरे से लड़ने के लिए एक छोटी सी चीज हुआ करती थी जिसे कहा जाता है लालटेन। वो कहा है कि अंधेरों से दोस्ती भी थी, रोशनी का सहारा भी था, एक छोटी सी लालटेन में पूरा जमाना हमारा भी था। रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ, और शो लेकर आ गई हूँ कल्चर कारवां, जहाँ हम ढूंढ कर लाते हैं कल्चर की वो कहानियाँ जो वक्त के साथ कहीं धुंधली सी हो गई हैं। और आज की कहानी है लालटेन, रोशनी की वो साथी जिसने सदियों तक इंसान का साथ दिया। अब बात कर रहे हैं लालटेन की, तो आइए चलिए जानते हैं आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब बिजली का नामो निशान भी नहीं था, तब लोग रोशनी के लिए मशाल दिए और तेल के दीपक का इस्तेमाल करते थे। लेकिन उस समय सफर के दौरान हवा से बचने के लिए एक ऐसा दिया चाहिए था जो हवा में भी जले। इसी जरूरत ने जन्म दिया लालटेन को। और हिस्ट्री तो ये भी बताती है कि 16th to 17th century यूरोप में मेटल फ्रेम और ग्लास वाले लालटेन बनाई गई, जिसके अंदर तेल या केरोसिन का दिया जलता था। लेकिन धीरे धीरे ये इनोवेशन दुनिया भर में फैल गया और फिर बस इंडिया के गांव-गांव की पहचान बन गया। वो कहा है कि छोटी सी लौ थी मगर हौसला कम नहीं था, लालटेन ने सिखाया अंधेरा कभी भी दम नहीं था। इसी के साथ अब वक्त हो गया है एक छोटी सी म्यूजिक ब्रेक का, वापस आकर जानेंगे इंडिया में लालटेन का सफर। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: सेल्फ बी अवेयर। ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

रेडियो महारानी 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं लालटेन की। तो आइए चलिए जानते हैं इंडिया में लालटेन का सफर। इंडिया में लालटेन का असली सफर शुरू हुआ 19th सेंचुरी में, जब केरोसिन ऑयल सस्ता और आसानी से मिलने लगा। अगर बात करें उस वक्त की, उस वक्त गांव में ना बिजली थी ना स्ट्रीट लाइट्स, तो हर घर में एक लालटेन होती थी। रात को बच्चे उसी की रोशनी में पढ़ते थे, माँ उसी के सहारे खाना बनाती थी और दादा दादी उसी के नीचे बैठकर कहानियां सुनाते थे। वो कहा है कि एक लौ थी जो हर घर में जलती थी, लालटेन थी मगर जिसे उम्मीद पलती थी। तो चलिए जानते हैं रेलवे और लालटेन का साथ। अगर आप पुरानी इंडियन रेलवे की फोटोज देखें तो गार्ड के हाथ में एक लाल और हरी लालटेन जरूर नजर आती है, क्योंकि कहा जाता है कि ट्रेन सिग्नल्स देने के लिए रेलवे स्टाफ लालटेन का इस्तेमाल करता था। रेड लाइट का मतलब था रुक जाओ और ग्रीन लाइट का मतलब था रास्ता साफ है। यानी एक छोटी सी लालटेन हजारों यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा संभालती थी। लालटेन से जुड़ी और भी कहानियां हैं, लेकिन जानेंगे इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।
2: सर, आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
3: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
4: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ हर शो लेकर आई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं लालटेन की। तो आइए चलिए जानते हैं लालटेन और पढ़ाई का रिश्ता। एक जमाना था जब भारत की लाखों बच्चे लालटेन की रोशनी में पढ़कर बड़े हुए। बिजली नहीं थी लेकिन सपने थे, और वो सपने लालटेन की हल्की सी रोशनी में भी चमकते थे। वो कहा है कि रोशनी कम थी मगर हिम्मत कम नहीं थी। लालटेन के नीचे बैठे बच्चे कल का सूरज वही थे। अब लालटेन की बात कर रहे हैं तो आइए चलिए जानते हैं लालटेन इन कल्चर और सिनेमा। बात करें इंडियन सिनेमा और लिटरेचर में तो लालटेन का एक अलग ही चार्म रहा है। गांव की रात, खेतों की पगडंडी और हाथ में जलती हुई लालटेन, ये सीन सैकड़ों फिल्मों और कहानियों का हिस्सा रहा है। लालटेन सिर्फ रोशनी नहीं थी, वो नॉस्टैल्जिया थी, एक एहसास थी। अब बात कर रहे हैं लालटेन की तो आइए चलिए इसके पीछे का साइंस भी जानते हैं। लालटेन का डिजाइन भी काफी इंटरेस्टिंग होता है। ग्लास चिमनी हवा को कंट्रोल करती है जिससे फ्लेम स्टेडी और ब्राइट जलती है। और बात करें नीचे के मेटल की तो मेटल टैंक केरोसिन का फ्यूल देता है, यानी सिंपल डिजाइन लेकिन ब्रिलियंट इंजीनियरिंग। अब बात कर रहे हैं इसकी तो इससे जुड़े हुए फेस्टिवल्स के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।
2: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
3: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
2: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
0: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान। किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
4: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं लालटेन की। तो आइए चलिए जानते हैं फेस्टिवल और ट्रेडिशन में किस तरह से अपनी भूमिका निभाता था लालटेन। इंडिया के कई फेस्टिवल में भी लालटेन का यूज होता है। कहीं लोग दिवाली पर डेकोरेटिव लैंटर्न्स जलाते हैं, तो कहीं गांव में आज भी रात की रस्में लालटेन की रोशनी में होती हैं। ये सिर्फ एक लैंप नहीं, कल्चर का एक हिस्सा है। तो चलिए आइए जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद आखिर क्या हुआ लालटेन का। 20वीं सेंचुरी के बाद जब बिजली गांव-गांव में पहुंचने लगी तो धीरे धीरे लालटेन का यूज कम होने लगा, लेकिन आज भी कई गाँव में और इमरजेंसी सिचुएशंस में लालटेन अभी भी काम आती है। और कुछ लोग तो सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए भी लालटेन जलाते हैं। वो कहा है, वक्त बदला, शहर बदली, रोशनी के तरीके बदल गए, पर लालटेन की लौ में छिपे किस्से कभी नहीं बदल पाए। अब इतनी सारी बात करी है लालटेन से जुड़ी हुई, तो चलिए इमोशनल कनेक्शन के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। सच कहें तो लालटेन सिर्फ एक लाइट सोर्स नहीं थी, वो गांव की रातों की साथी थी, कहानियों की गवाह थी और सपनों की रखवाली थी। वो कहा है कि रोशनी आज भी है, मगर वो बात कहाँ। लालटेन की लौ में जो जादू था वो आज की रात में कहाँ। और इसी के साथ आज हमने बात की कल्चर कारवा में लालटेन की। कल्चर कारवा, जहाँ हम ढूंढ कर लाते हैं भारत की छोटी छोटी चीजों में छुपी बड़ी कहानियाँ। फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ, तब तक याद रखिए कि कभी कभी छोटी सी लौ भी जिंदगी को रोशन कर देती है। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: मैं मस्त म्यूजिक सुनते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, एटीट्यूड फुल, ध्यान जीरो। तभी एक बाइक वाले भैया ब्रेक मार के बोले, दीदी रोड क्रॉस कर रहे हो या रनवे पे कैटवॉक? नहीं, मैं तो इतना शॉक्ड हुई कि मेरे एक्सप्रेशन देख कर ट्रैफिक लाइट भी शर्मा के ग्रीन से रेड हो गई। मगर उस दिन समझ आया, फोन पॉकेट में, ध्यान रोड पे और स्पीड जीरो पे रखो। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट देखो, राइडर्स हेलमेट टाइट और ड्राइवर्स सीट बेल्ट राइट। हंसी मजाक अपनी जगह पर, सेफ्टी सबसे ऊपर।
0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
2: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

आई मीन आज का मौसम ये क्या हो रहा है मेरे दोस्त, मौसम ने सच में ये मजा ही बांध दिया, समा ही बांध दिया। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। मौसम आज 34 से 35 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचा था बट उतना लगा नहीं। तो देखो अब अगले 3 घंटों के लिए मैं आ चुका हूँ, बस ये बताने आया हूँ, और खूब सारी बातें होने वाली, मस्ती होने वाली, गाने भी एक से बढ़कर एक चलते रहेंगे। एंड अभी आपको बता दूं कि जो गाना था ना, इस गाने को अभी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ऐसे ही और इससे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे गाने कुछ ही देर में चलने वाले हैं आप लोगों के लिए, वो भी पूरे अगले 3 घंटे तक। और इंडिया में एक चीज़ है जिसे कहते हैं पनीर, हर वेजिटेरियन की ख्वाहिश, वेजिटेरियन की ख्वाहिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, प्रोटीन का सोर्स और कोई है ही नहीं। तो बता दूँ आपको, पनीर बैन हो सकता है। कौन सा पनीर बैन हो सकता है उसके बारे में करेंगे बात। एंड साथ ही साथ एक इंसान को, डिलीवरी बॉय को पैसे नहीं दिए गए मगर नोटों की माला पहना दी गई, कहाँ का है ये पूरा मामला ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड पता क्या होता है, एक इंसान ना अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है एक आदमी, और खासकर इस आदमी की तारीफ हो रही है जिसकी वीडियो वायरल हो गई है, जहाँ पर ये इंसान एक सीट बनकर बैठ गया है। हाँ, जमीन पर बैठ गया है सीट बनकर, और इसकी पीठ पर कौन बैठा है वो भी मैं बताऊंगा मगर थोड़ी देर बाद। चलिए इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और फरीदाबाद से रिलेटेड कोई भी अगर आपको अपडेट देनी होगी तो वो भी दूंगा, और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई शिकायत है फरीदाबाद से रिलेटेड तो वो भी आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो। नंबर है जी 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: और इस बड़ी जिंदगी को छोटी ना बनाए, शराब पीकर गाड़ी ना चलाए।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
3: लाइफ ऑन व्हील्स, जहाँ जिंदगी है वहाँ हम हैं। मैं हूँ एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियाँ आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
4: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

बोला गया है कि अभी कुछ दिन तक ऐसे ही चलने वाला है। क्या मौसम ऐसे ही चलने वाला कुछ दिन तक, और अगले हफ्ते भी आपको फिर से बारिश देखने को मिल सकती है, और हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली किसी भी शाम को फिर से अचानक से मौसम बन जाए जैसे कि कल बना था। स्वागत है सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। मौसम की अगर बात करें, क्या गजब का मौसम हो रखा है। आज दिन में 35 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचा था 3 से 4 बजे के करीब, और ये था मैक्सिमम टेम्परेचर जो कि आज गया। बट उतनी गर्मी फील हुई नहीं थी क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर वॉज लाइक 23 डिग्री सेल्सियस, और आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों को इतना ही टेम्परेचर देखने को मिलने वाला है अप टू 13th और 14th में। बस 13 से 14 मई तक आप लोगों को इतना ही टेम्परेचर मिलेगा, मगर फिर उसके बाद गर्मी बढ़नी शुरू होगी और फिर प्रचंड रूप से गर्मी पड़नी शुरू हो जाएगी, जो कि दिल्ली एनसीआर की हमेशा की हर साल की कहानी होती है। आप सभी को पता है दिल्ली एनसीआर में हर साल मई का महीना और साथ साथ जून का महीना कितना ज़्यादा गर्म होता है, तो इस साल भी वैसा ही होने वाला है कुछ। तो हम लोग वेट करेंगे कि इस साल की गर्मी जल्दी से निकल जाए और हो सके तो बारिश और हो जाए, बस इंद्रदेव हम पे मेहरबान हो जाए तो यही हो जाएगा। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने और खूब सारी बातें लेकर आया हूँ, तो ये सब तो होती रहेंगे, मगर उससे पहले आप सभी के लिए ये गाना रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
2: इंटरनेट मीडिया अकाउंट या मोबाइल फोन पे पैसे की मांग पर भरोसा ना करें। किसी भी मैसेंजर ऐप पर अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहें।
1: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शाम हो गई है और काफी सारे लोग इस टाइम ऑफिस से निकल चुके होंगे, नो डाउट निकल चुके होंगे काफी सारे लोग, बट अभी मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखो ऑफिस से निकल गए हो, ट्रैफिक जाम में फंसे हो, तो फिर टेंशन किस बात की लेनी। मैं हूं ना आप सभी के साथ, बातें कर रहा हूँ आप सभी के साथ। और देखो फरीदाबाद, अगर आप लोग इस टाइम कहीं पर भी ट्रैफिक में फंसे हो तो आप लोग मुझे मैसेज करके बता दो, ताकि मैं दूसरे लोगों को बता सकूं कि हाँ इस रास्ते से नहीं जाना है। और अगर मैं अभी गूगल मैप खोल के देखूं तो देखो गूगल मैप मेरे सामने ये बता रहा है कि गुड़गांव से आने वाला ट्रैफिक थोड़ा सा हाई है, और साथ ही साथ NIT 1 में भी थोड़ी सी हार्डवेयर चौक के आसपास जाम दिख रहा है, एंड इसके अलावा बड़खल पुल एंड नीलम पुल दोनों के दोनों जाम पड़े हैं, मतलब जब आप लोग मथुरा रोड को ज्वाइन करते हो उस तरफ की। बस इतना सा है, जाम पूरी तरह से नहीं पड़े, स्लो मूविंग ट्रैफिक है। और इसके अलावा फरीदाबाद में और भी जगहों पर रेड लाइट दिखाई दे रही है, रेड लाइट एज इन रेड लाइन दिखाई दे रही है गूगल मैप्स पर। तो अगर आप लोग भी जाम में फंसे हैं तो शेयर कर दीजिए अपनी लोकेशन, नंबर है जी 9654896896, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। देखो कॉल उठाने में थोड़ी सी देरी हो सकती है, मगर हाँ रिप्लाई जरूर किया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजने वाले हैं, बातें होने वाली है। और हाँ वापस आकर बात करते हैं पनीर बैन की। देखो वेजिटेरियंस का एकमात्र प्रोटीन का सोर्स बचा था पनीर, अब उस पर भी बैन लगने जा रहा है। कौन से पनीर पर बैन लगने जा रहा है ये भी तो बताना बाकी है ना। अब देखो अपने आप से अजम्पशंस मत लगाइए, इसके लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। कौन सा पनीर बैन होने वाला है ये बड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी तक मार्केट में बिक रहा था, ये कैसे बिक रहा था ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कौन सा पनीर है वो, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। एंड अभी मैं इस टाइम आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देने आया हूं, जो कि है मिशन जागृति की तरफ से 8th मेगा ड्राइंग कंपटीशन, जो कि फरीदाबाद में होने जा रहा है, सेक्टर 12 रोड पर, हुड्डा ऑफिस और ओपन थिएटर के बिल्कुल सामने। और ये है संडे यानी कि 30th नवंबर 2025 को। टाइम आने वाला है सुबह 10 बजे का, तो आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए और इन पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9312004652। और इसके अलावा आपको बता दूं कि टॉप 26 पार्टिसिपेंट्स को स्पेशल गिफ्ट मिलने वाले हैं, और इसमें क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12th तक के बच्चों के लिए बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो आप लोग जाके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर कोई पेरेंट मुझे सुन रहा है वो अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, नंबर है 9654896896। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

मार्केट में ना दो टाइप के पनीर मिलते हैं और उसके लिए पनीर पुलिस ऑलरेडी एक साल से लगी पड़ी है। पनीर पुलिस वो लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और छोटे छोटे पनीर के टुकड़े उठा के उसमें आयोडीन डाल के बोलते देखो कलर चेंज हो गया, मतलब ये नकली पनीर है। स्वागत है जी सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और जो मैं ये बात बोल रहा हूं, मेरे ख्याल से आप सभी ने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी। तो देखो, अब सरकार ने बाजार में बिकने वाले जितने भी सिंथेटिक पनीर है इसको पूरी तरह से बैन लगाने के लिए घोषणा कर दी है, ऑलमोस्ट तैयारी कर ली है और घोषणा भी जल्दी हो जाएगी। तो बता दूं आपको, मार्केट में दो टाइप के पनीर मिलते हैं, एक तो होता है जी असली पनीर, दूसरा है एनालॉग पनीर जो कि वेजिटेबल फैट से बनता है और भी बहुत सारे तरीके होते हैं उसको बनाने के जो सेहत के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। बट मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर ये सेहत के लिए नुकसानदायक होता है तो ये ऑलरेडी मार्केट में बिक क्यों रहा था अभी तक? नहीं, ये सवाल आप लोगों के मन में नहीं आएगा। तो कहते हैं सेहत के लिए नुकसान पहुंचाने वाले सिंथेटिक पनीर को बाजार से अब बाहर किया जाएगा और ये FSSAI ने फैसला लिया है। तो देखो, फैसला भले ही देर आए मगर दुरुस्त आए और ये जल्दी से जल्दी जितना भी नकली पनीर है मार्केट में वो सारा का सारा बाहर चले जाना चाहिए, बस मैं ये कहना चाहूँगा। और देखो, आप लोग पनीर की पहचान कैसे कर सकते हो असली पनीर की? तो असली पनीर जो दूध से बना है वो सॉफ्ट होता है, क्रीमी होता है, जो नकली होगा वो आपको पता लग जाएगा, रबड़ी टाइप का उसका टेक्स्चर होगा। तो चलिए, इसी के साथ साथ ही मैं ये बता दूँ आपको कि जितनी भी कंपनीज है जो एनालॉग पनीर बनाती है उन लोगों को बोल दिया है स्टॉक खत्म कर दिए जाए और उनको समय भी दिया जाएगा एक कि हाँ इस टाइम तक आप अपना सारा स्टॉक खत्म कर दीजिए। मगर मेरे मन में एक और सवाल है, क्या बैन लगने के बाद ये पनीर नहीं बिकेगा मार्केट में? मुझे तो लगता है बिकेगा। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइएगा जरूर। नंबर है जी 9654896896।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
4: सुन भाई सुरेंद्र।
0: हाँ भाई सुरेंद्र।
4: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे? सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो, मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
0: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: कहते हैं सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, और इसी मूल पर भाटिया सेवक समाज चैरिटेबल हॉस्पिटल पिछले 65 वर्षों से लाखों फरीदाबाद वासियों को अपनी सेवाएं दे रहा है। NIT2 स्थित भाटिया सेवक समाज चैरिटेबल हॉस्पिटल में आई हॉस्पिटल, डेंटल, फिजियोथेरेपी, गायनेकोलॉजिस्ट जैसी क्लिनिकल सर्विसेज भी उपलब्ध है। यही नहीं, भाटिया सेवक समाज पूरे फरीदाबाद को अफोर्डेबल दामों पे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की सर्विसेज भी देता है। इस संस्था का मिशन है आने वाले वक्त में फरीदाबाद वासियों को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी मुहैया करवाएं, ताकि बीमारियों का इलाज सब तक आसानी से पहुंच पाए। वहां बन रहे हॉस्पिटल में आप भी अपना आर्थिक योगदान दे सकते हैं। आप अपना आर्थिक योगदान यूनियन बैंक के अकाउंट नंबर 3544-02-01-00-00-515 पर जमा करा सकते हैं, जिसका IFSC कोड है QBIN 0535443। आपकी दी गई छोटी सी सहयोग राशि भी लाखों लोगों के लिए बन रहे हॉस्पिटल में बड़ी मदद होगी। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें मोहन सिंह भाटिया 9899498909।

मैं रिसेंटली एक मार्केट में गया, मैं दुकान पर गया, 20 रुपए की पानी की बोतल खरीदी, मैंने 100 का नोट पकड़ाया तो भैया कह रहे देख बेटा ऐसा है तू 20 रुपए कैश मत दे, तू ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे। और यही हर जगह हो रहा है। एक टाइम था जब लोग ऑनलाइन पैसे नहीं ले रहे थे और अब एक टाइम है जब सब लोग कह रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट कर दो, चलता है हमारे यहाँ पर। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आप लोगों ने भी ये शायद प्रॉब्लम फेस करी होगी। साल था 2016, नोटबंदी हाल ही में हुई थी उस टाइम, और फिर उसके बाद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे लोगों ने UPI पेमेंट शुरू करी, और एक वॉलेट भी होते थे हमारे पास, डिजिटल वॉलेट जिसमें पैसे पड़े रहते थे। तो फिर कोई लेता नहीं था उस टाइम हम लोग कैश होता नहीं था। देखो 500 के पुराने वाले नोट थे, कोई भी इंसान 100 के नोट दे ही नहीं रहा था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, रेवोल्यूशन आया, लोगों ने डिजिटल पेमेंट देनी शुरू की, लोगों ने डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करनी शुरू की। इवन दो आज रेडी वाले भी डिजिटल पेमेंट ले रहे हैं, बट अब माहौल ऐसा है लोग कैश ही नहीं ले रहे हैं। मैंने ये चीज़ देखी है, एंड इवन आई फॉरगॉट टू कैरी माई वॉलेट टुडे, मतलब आज मैं अपना वॉलेट घर पर ही छोड़ा है, और ये सच बोल रहा हूँ मैं सिर्फ आप लोगों को बात बताने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और वॉलेट में था क्या, मात्र 100 रुपये, और मुझे पता है मेरे फ़ोन से पेमेंट हो जानी है, तो वॉलेट में और पड़ा ही क्या है। जितने लाइसेंस वगैरह है वो भी फ़ोन के अंदर है, डिजिटल लॉकर जो होता है उसमें पड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है जब से ये डिजिटल रेवोल्यूशन आया है इसके बाद बहुत सारी चेंजेस आई है, मगर कहीं ना कहीं ऐसे पार्ट भी आता है, ऐसा टाइम भी आता है जब हमारे फ़ोन की पूरी लिमिट ख़त्म हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए 1 लाख रुपये की लिमिट है आपकी डेली खर्चे की, और काफ़ी बार होता है कि 1 लाख रुपये आप दिन में खर्च कर सकते हो, वो होता है शादी वाले घर में। फिर उसके बाद अगर आपने कुछ डिलीवरी करके मंगाया तो कैश कैसे दोगे, अगर कैश होगा ही नहीं तो। करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आप सभी के साथ शेयर करूंगा मगर इस गाने के बाद। सुनिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिलवाले नहीं होते।
1: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
2: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
3: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।
2: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ, AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

घर पे मंगाया था सामान और सामान देने पहुंचे डिलीवरी वाले भैया। डिलीवरी वाले भैया ने बोला, देखो 2000 रुपए का सामान है, आप लोग 2000 रुपए दे दो। अब उन्होंने जैसे ही ऑनलाइन ट्रांसफर करना शुरू किया तो पता लगा उनकी लिमिट खत्म हो चुकी है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और जो मैं अभी बात बोल रहा हूं ना, वो ये है कि एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर एक शादी वाले घर में सामान डिलीवरी करने पहुंचा था डिलीवरी एजेंट और घर वालों के पास पैसे ही नहीं थे। मतलब कैश भी नहीं था, ऑनलाइन ट्रांसफर भी नहीं हो रहा था। कैश था ऑल्दो, बट वो अभी गिन रहे थे कि कितना कलेक्शन हुआ है। चलो उस चीज़ को साइड में रखते हैं। फिर वीडियो में आगे क्या हुआ, डिलीवरी एजेंट ने ना बोला, भैया मेरे को तो पैसे दे दो, आप लोग अपना गिनते रहो कैश। तो एक आंटी जी बाहर आई, आंटी ने नोटों की माला पकड़ा दी डिलीवरी बॉय को। एंड यहाँ पर डिलीवरी बॉय भी बड़ा खुश हो रहा है, डिलीवरी बॉय ने अपने ऊपर माला पहन भी ली। अभी देखो ये नोटों की माला असली है या नहीं, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई अभी, बट स्टिल ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और लोग यही कह रहे हैं, देखो वेलकम टू इंडिया, ऐसा सिर्फ भारत में ही हो सकता है, इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स। तो देखो 2000 रुपए का सामान मंगवाया, 2000 रुपए कैश नहीं थे, ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं हो रहे थे, फिर उसके बाद पकड़ा दी गई फूलों की माला, मतलब नोटों की माला। तो आप लोग बताइए, अगर आप लोगों को कोई नोटों की माला देगा तो आप पहन के वापस जाओगे या फिर बैग में पैक करके वापस जाओगे? क्योंकि मैं तो बैग में पैक करके ही जाऊंगा, क्योंकि क्या पता रास्ते में कोई छीन ले। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, और भी ढेरों बातें करेंगे, जिसमें एक टंकी पर 5 लड़के चढ़ गए और ये कुछ ज़्यादा ही दुखदायक थी ये खबर। क्या है इसके पीछे बताएंगे आप सभी को, मगर इस गाने के बाद।

0: शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: इंटरनेट मीडिया अकाउंट या मोबाइल फोन पे पैसे की मांग पर भरोसा ना करें। किसी भी मैसेंजर ऐप पर अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: चल अर्जुन, शुरू हो जा।
2: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
1: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
3: शायरी पे ध्यान लगाओ।
1: इरशाद,
2: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
1: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा,
2: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है, फिर भी अपना रुतबा है यारों।
1: ये बात तो सही है।
2: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
1: कैसे कैसे?
2: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ।
1: अरे यार, वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
2: सुनो सुनो।

सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्त, और सोशल मीडिया कुछ ऐसा है कि आजकल लोग सिर्फ और सिर्फ फेमस होने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। कोई भी कंटेंट बनाना हो वो कुछ भी करने को तैयार है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। अब जो मैं आप लोगों को बात बोल रहा हूँ ना, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ है जहाँ पर 5 लड़के सोशल मीडिया की रील बनाने के लिए, इनसे कह सकते हैं कि शॉर्ट्स बनाने के लिए, वो एक पानी की टंकी पे चढ़ गए। हाँ, वही वाली पानी की टंकी जो हम लोगों ने शोले मूवी में देखी थी, जो पुराने टाइप की, पुराने ज़माने की पानी की टंकी होती है, उसमें जो सीढ़ियाँ होती है वो सीमेंट की बनी होती है। तो ये चढ़ तो गए, इन्होंने रील भी बना ली, मगर जैसे ही इन्होंने उतरना शुरू किया वैसे ही पूरी की पूरी सीढ़ी टूट गई और वहाँ पर इनमें से एक लड़के ने अपनी जान गंवा दी। और ये बहुत ही ज़्यादा दुखदायक वीडियो थी देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए थे वहाँ पर। और जैसे ही मैंने ये वीडियो देखा उस लाइक, यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा बढ़ता जा रहा है। लोग सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो ये 5 लड़के थे जो कि चढ़ गए थे पूरे के पूरे पानी की टंकी पे। वापसी आते वक्त एक लड़का गिर गया ऊपर से नीचे, 2 अदर इंजर्ड हो गए, मतलब 2 जो और थे वो इंजर्ड हो गए और बाकी 2 ऊपर ही फंस गए थे। फिर उसके बाद इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर आया और उनको रेस्क्यू किया गया वहाँ से। तो मुझे ऐसा लगता है ये लोग सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए किसी भी हद तक चले गए जस्ट बिकॉज इन लोगों ने शायद ये टंकी देखी होगी, किसी ना किसी वेब सीरीज़ में देखी होगी। देखो, मैं किसी सीरीज़ को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी फिल्म को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो रही है। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, सोशल मीडिया के ऊपर और भी चर्चा करेंगे मगर इस गाने के बाद। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: है शाम जब तुम घर लौटते हो। माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: Yes, I have a superb track for you actually, which will tickle to your husband and you also. So it's a song from Basha, dedicated to one and only A.R. Rahman. So here it is, the new track.

0: કેમ છે, કેમ છો, કેમ છો, મજામાં ને? તો અત્યારે મારી પાસે સાથે કોણ છે નેક્સ્ટ? ભાભીજી
1: જરૂરી નહીં કે આપ લોગ સોશિયલ મીડિયા પે જો ભી ચીજ દેખો વો હમેશા સચ હો. સ્વાગત હૈ આપ સભી કા રેડિયો મહારાણી 89.6 પર. મેં હું ધ મોસ્ટ વોન્ટેડ મંડા આપ સભી કે સાથ. આપ લોગો ને સોશિયલ મીડિયા પે બહોત સી વિડિયોઝ દેખી હોંગી, બહોત સારી, ઓર ઉસમે કાફી બાર એસા હોતા હૈ કે યે સચ ભી હૈ યા નહીં, ક્યુંકિ આજકલ તો એઆઈ ઓર અસલિયત મે ફર્ક હી નહીં પતા ચલ રહા. ઓર ઇસકે અલાવા काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आप लोग देखते हो लोग अपनी मैरिड लाइफ की या फिर कह सकते हैं रिलेशनशिप वाली वीडियोस डालते हैं, जहाँ पर वो लोग बहुत खुश हैं, वो लोग मस्ती कर रहे हैं, वो लोग घूमने जा रहे हैं, वो लोग इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, कैफेज में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, वो लोग अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा खुश दिखा रहे हैं. तो उसके बाद आप लोगों को लगता है यार ये लोग इतने खुश हैं, मेरी लाइफ क्यों ऐसे ख़राब है? मगर सच्चाई क्या है ये शायद हम लोगों को भी नहीं पता. क्या पता सिर्फ वो वीडियो बनाने के लिए उतना खुश दिखा रहे हैं अपने आप को. तो ये सवाल मेरे मन में आया एंड आई वाज लाइक फरीदाबाद से पूछना चाहिए, क्योंकि फरीदाबाद के भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि वीडियोस बना रहे हैं. एंड इवन मैंने ऐसे भी चीज़ें देखी है जहां पर वो लोग वीडियोस में दिखाते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, मगर कुछ ही टाइम बाद उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं या फिर वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं. तो देखो, नज़र इज़ रियल एंड द सेकेंड थिंग इज़ व्हाटएवर यू सी ऑन सोशल मीडिया इज़ नॉट एट ऑल ट्रू. मतलब आप जो भी सोशल मीडिया पर देखते हो ज़रूरी नहीं कि वो सच हो. यह सिर्फ रिलेशनशिप को ही लेकर नहीं, ये और भी चीज़ों को लेकर है, क्योंकि काफ़ी बार हम लोग सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आकर चीज़ें ऑर्डर कर लेते हैं. हम लोगों को लगता है भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लाइक D10 फेस पैक, D10 ये, D10 वो. चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए एंड आई गेस आप लोग भी मेरी बात से ताल्लुकात रखते होंगे. चलिए अभी आप सभी के लिए ये गाना रेडियो महारानी 89.6 पर. मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ.

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
5: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
4: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

स्वागत है जी सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ भी चीज वायरल हो जाती है और इसी के ऊपर हम लोग बहुत देर से बातें कर रहे थे। और सोशल मीडिया की एक और वीडियो वायरल हो रही है जहां पर एक आदमी कुर्सी बन के बैठ गया सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। और ये कहाँ का वीडियो है? ये इंडिया का तो नहीं है, ये बाहर का वीडियो। और ये अभी पूरी एग्जैक्ट वीडियो कहाँ की है इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं आया है सामने, बट ऐसा वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है, एक हॉस्पिटल का एरिया है और वहाँ पर एक पति पत्नी जा रहे हैं। पत्नी प्रेग्नेंट है एंड पति सबसे बोलता है कि प्लीज़ अब सीट दे दीजिए, मगर कोई उठने को तैयार नहीं है। तो वहाँ पर मतलब देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक कोई प्रेग्नेंट लेडी है उनको सीट सबसे पहले ऑफर कर देनी चाहिए थी, मगर किसी ने भी सीट ऑफर नहीं करी। तो फिर उसके बाद आदमी खुद सीट बनकर नीचे ज़मीन पर बैठ गया और उसने अपनी पत्नी को बोला आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। तो वो जैसे ही झुककर पीठ बैठा तो पत्नी उनकी पीठ पर बैठ गई। और ये वीडियो की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है। यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि देखो बहुत गलत है जैसे कि लोगों ने सीट नहीं दी। और यहाँ पर मैंने तो ये चीज़ रियल में देखी है कि काफ़ी सारे लोग मेट्रो में ट्रैवल कर रहे थे, वुमेन सीट रिजर्व्ड होती है, एजड लोगों के लिए भी सीट रिजर्व्ड होती है, मगर वहीं पर जैसे ही एक प्रेग्नेंट लेडी चढ़ी तो जो वुमेन बैठी थी वो तक नहीं उठी, बट हाँ एक आदमी उठे, एक भले आदमी थे वो अपनी सीट से उठे, उन्होंने बोला आप इधर आके बैठ जाइए। तो ये भी होता है, इंडिया में ही होता है। एंड देखो जहाँ पर अच्छे लोग हैं वहाँ पर बुरे लोग भी हैं, जहाँ बुरे लोग हैं तो वहाँ पर

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
2: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
1: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

देखो मंथ का ना अभी छठा दिन है और ये छठे दिन में हम लोगों को एक चीज तो समझ आ ही गई है कि सैलरी चाहे कितनी भी हो टिकती कोनी, कहाँ टिकती है, हम लोगों के पास तो नहीं टिकती। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। और सैलरी की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि देखो अभी काफी सारे लोग हैं जिनकी सैलरी आ गई होगी, काफी सारे लोग हैं जिनकी सैलरी कल आएंगी, जिसकी सैलरी आज आई है, या फिर हो सकता है आप लोगों की सैलरी 10 तारीख तक आ जाएगी। किसी की 10 को आती, किसी की 12 को आती, किसी की मैक्सिमम 15 तक, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाता सैलरी का। तो मैं सैलरी की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि देखो हर इंसान बस इसी बात को लेके जी रहा है, वो ऑफिस जाता है, काम करता है, मेहनत करता है, दोस्त बनाता है, वापस घर आता है और फिर महीने में एक दिन सैलरी आती है, 30 दिन काम कर लेता है, 30 ना सही 28 दिन तो काम कर ही लेते हैं या फिर 26 दिन तो काम कर ही लेते हैं। तो चलिए मैं बस इतना जानना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोगों की सैलरी कितने दिन टिकती है और क्या ज्यादा सैलरी होना जरूरी है अच्छी लाइफ जीने के लिए, या फिर छोटी मोटी सैलरी में भी आप लोग अपना काम चला सकते हैं, बताइएगा जरूर। नंबर है जी वही 9654896896। बट इसी के साथ साथ मैं एक और बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि देखो अपनी लाइफ में ना पैसों को उतनी ही अहमियत दो जितना आप पेट्रोल को अहमियत देते हो गाड़ी में डालने के लिए, क्योंकि देखो गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत है, ऐसे ही जिंदगी चलाने के लिए थोड़ा बहुत पैसों की जरूरत है, पैसों पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

और क्या है, तब आप क्या जवाब दोगे? स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड बंडा आप सभी के साथ। ये जो मैं बात बोल रहा हूं ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है और ये शेयर किया बैंगलोर में रहने वाले एक इंजीनियर ने। उनकी सैलरी है 38 LPA, 38 लाख रुपए साल का कमाता भाई ये बंदा। और इससे सवाल पूछ लिया गया इनके होने वाले ससुर जी द्वारा कि बेटा सिबिल स्कोर क्या है ये तो बता दो। और फिर इसके बाद इसने कहा मैं सिंगल ही ठीक हूँ अंकल जी, मेरे को नहीं करनी अब कोई शादी वादी। और मुझे लगता है ऐसे जब इंसिडेंट सामने आते हैं ना, फिर इंसान का ना विश्वास उठ जाता है चीज़ों से। अब इस लड़के का कहना है कि देखो लड़की खुद 8 LPA में काम कर रही है और मैं 38 LPA कमा रहा हूँ, फिर उसके बाद मुझसे सिबिल स्कोर क्यों पूछा जा रहा है? ऑफिस ही बात है ना, वो कह रहा है कि देखो मेरी जॉब परफॉर्मेंस ठीक है, सब कुछ ठीक है, मगर फिर मुझसे पूछा जा रहा है कि अप्रेजल कितना हुआ, तुम्हारा अप्रेजल नहीं हुआ तो कितना होगा, ये कोई बात थोड़ी ना होती पूछने की। और बता दूं आपको, इन सब चीज़ों से ही परेशान होकर इस बंदे ने कहा देखो सिंगल रहना ही ठीक है और मैं तो सिंगल रहना ही पसंद करूंगा। और ये पूरा का पूरा पोस्ट इन्होंने शेयर किया है सोशल मीडिया पर। और जैसे ही ये मैंने पढ़ा, आई वाज लाइक है ऐसा भी होता है क्या? क्योंकि लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें होती है जो कि बहुत पहली बार होती है। तो आप लोगों के साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी जो कि पहली बार हुई होंगी। एंड मैं तो बस यही प्रे करता हूँ कि भगवान किसी के साथ भी ऐसी चीज़ ना करें कि कोई उनसे आके उनका सिबिल स्कोर पूछे बैंक वालों के अलावा। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, गाने और बातें यूं ही चलते रहेंगे मेरे दोस्त।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
2: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

0: watch more, log on to www.erosnow.com.
1: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
2: सुन भाई सुरेंद्र।
3: हाँ भाई सुरेंद्र।
2: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
3: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले घर का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।
4: मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि रोड बनने के बाद इंसान को याद आता है कि अरे नहीं यार सीवर लाइन भी डालनी थी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली ये चीज़ देखी है। एक्चुअली मैं सीवर लाइन तो ऑलरेडी थी बट वो छोटी पड़ रही थी, इसलिए एक बड़ी सीवर लाइन डाली गई है मेरे घर के आसपास वाले एरिया में। एंड यू नो वॉट, अभी जो बारिश आई है पिछले कुछ दिनों में, कीचड़ इतना ज़्यादा हो गया, गाड़ी कितनी बार भी धो लो वहाँ से गुजरनी तो ज़रूर है, और जैसे ही गुजरेगी तो फिर से कीचड़ गाड़ी पे लगेगा, और फिर उसके बाद अगर बाई चांस गाड़ी से कीचड़ घर तक आ गया ना तो फिर मम्मी ने सुना सुना के ही कह देना है। मम्मी कहती है कहाँ से आ रहा कीचड़ में खेल के। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। और जो मैं बातें बोल रहा हूँ आई वाज लाइक ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए मुझे भी आप लोगों के साथ, और यही चीज़ मेरे घर के पास हुई है। एंड आई नो फरीदाबाद में बहुत सारी जगह पर काम चल रहा है गहरी सीवर लाइन का, ताकि इस बार जब बारिश आए तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, कहीं पर नाले जाम ना हो और पानी की निकासी बहुत ईजिली हो जाए। तो देखो डेवलपमेंट इज अ स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस जो कि टाइम लेगा, हम लोग भी समझते हैं। तो चलिए इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, मैं निकलता हूँ यहाँ से, मिलूंगा आप सभी से फिर से दोबारा कल शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: कभी भी पीड़ा
1: yeah.
0: पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शकर शकर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker
1: yeah.

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा हेलमेट ही मांग लिया।
1: अब हम स्कूटी कैसे चलाएंगे?
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
3: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
4: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
4: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
5: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
6: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
7: KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
8: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड।
9: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
10: चल अर्जुन, शुरू हो जा।
11: तो अर्ज किया है?
10: अर्ज
11: कर रहा हूँ।
10: तो करना
11: इरशाद तो बोलो।
10: इरशाद।
11: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं पसीना भिगा देता है।
10: अरे
11: पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, AC कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
10: तुम्हारी हरकतें जानता होगा।
11: अबे पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने ATM में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोया हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
10: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
11: अरे
10: आप तू बोलता रहे भाई, हम चलते हैं।
11: अरे सुनो, अरे पूरा सुन के चलो, सुन के जाओ।
12: Yep. Basic crew.
13: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

चीज है ना ये इश्क, कभी यही इश्क दुनिया की हमें सबसे खूबसूरत जगह पर ले जाता है और कभी यही इश्क हमें हमारी तन्हाइयों से मिलवा देता है। इश्क में सब कुछ बहुत गहरा हो जाता है, खुशी भी है, याद भी है और इंतजार भी है। हेलो हाय, आप सुन रहे हैं शो इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। रात हो चुकी है और घड़ी में 8 बज चुके हैं। दिन की भागदौड़ अब धीरे धीरे थम रही है, सड़कें थोड़ी शांत हो रही हैं और दिल अब अपने असली ख्यालों की तरफ लौटने लगा है, क्योंकि रात का समय ऐसा ही होता है। दिन में हम जितना भी खुद को बिजी रख लें, रात को कुछ यादें, कुछ चेहरे, कुछ बातें खामोशी से हमारे पास आकर खड़े हो जाते हैं और शायद यही वजह है रात का ये समय इश्क को समझने के लिए सबसे सही होता है। तो चलिए इसी रात, इसी खामोशी और इन्हीं एहसासों के साथ शुरू करते हैं इश्क बाजियां का पहला सेगमेंट इश्क शायराना, जहां हम बात करते हैं उन शायरों की जिन्होंने मोहब्बत को सिर्फ महसूस नहीं किया बल्कि उसे शब्दों में ऐसे ढाला कि उनकी शायरी आज भी दिल तक सीधा पहुंच जाती है। और आज इश्क शायराना में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शायरा की जिनकी शायरी में मोहब्बत की नरमी भी है और जुदाई की चुप्पी भी। मैं बात कर रही हूँ परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की शायरी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो इश्क को किसी कहानी की तरह नहीं लिखती, वो इश्क को जिंदगी की तरह लिखती हैं, जहाँ सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं होता, जहाँ लोग हमेशा साथ नहीं रहते, जहाँ कभी कभी मोहब्बत बस एक याद बनकर रह जाती है। उनकी गजल है जिसकी शुरुआत ही इतनी सच्ची है कि सुनने को लगता है जैसे किसी ने दिल की बात कह दी हो। वो लिखती हैं, अब भला छोड़ के घर क्या करते, शाम के वक्त सफर क्या करते। सोचिए जब दिल किसी के पास रह जाए तो इंसान कहीं और जाकर भी क्या करेगा। रास्ते चाहे कितने भी खुले क्यों ना हो, सफर तभी खूबसूरत लगता है जब कोई साथ चलने वाला हो, और अगर वही इंसान हमारे साथ ना हो तो फिर सच में शाम के वक्त सफर करने का मतलब क्या रह जाता है। और आगे लिखती हैं, तेरी मसरूफियतें जानते थे, अपने आने की खबर क्या करते। कितना गहरा एहसास है इसमें। कभी कभी हम किसी की जिंदगी में इतने धीरे धीरे शामिल हो जाते हैं कि हमें लगता है शायद हमारी मौजूदगी भी मायने रखती है, लेकिन फिर वही एहसास होता है कि सामने वाला इंसान हमारी नहीं अपनी ही दुनिया में मसरूफ है। और तब दिल चुपचाप अपने कदम पीछे खींच लेता है, ना कोई शिकायत है, ना कोई सवाल है, बस एक खामोशी। और शायद इसी खामोशी को परवीन शाकिर ने अपने एक और शेर में बहुत ही खूबसूरती से कहा है। वो मुसाफिर ही खुली धूप का था, साए फैला के शजर क्या करते। मतलब अगर कोई इंसान रुकने के लिए बना ही नहीं है, अगर वो एक मुसाफिर था, तो फिर हम अपनी मोहब्बत की छांव फैलाकर भी उसे रोक कैसे लेते। कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग बस मुसाफिर होते हैं, वो आते हैं हमारी दुनिया में, कुछ यादें छोड़ जाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, और हम काफी देर तक उन्हीं रास्तों को देखते रहते हैं जहां से वो गुजरा था। परवीन शाकिर की शायरी की खूबसूरती यही है, वो मोहब्बत को सिर्फ पाने की बात नहीं करती, वो मोहब्बत के बाद बच जाने वाली खामोशी की भी बात करती हैं। और शायद इसीलिए उनकी शायरी सुनते हुए हर इंसान को कहीं ना कहीं अपनी कहानी नजर आ ही जाती है। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। एक गाना सुनते हैं और वापस लौटेंगे इसी इश्क शायराना के सफर में परवीन शाकिर की कुछ और बातों के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

और ये था बहुत ही खूबसूरत गाना। रात की खामोशी में कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बस सुनाई नहीं देते बल्कि महसूस होते हैं। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं हूं आपके साथ इश्क वाली गीत। और जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही है वैसे दिल भी थोड़ा थोड़ा और सच्चा होता जा रहा है। दिन में हम बहुत सारी बातें छुपा लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, खुद को बिजी रख लेते हैं, लेकिन रात को अक्सर वो ख्याल वापस आ जाते हैं जिनसे हम दिन भर बचते रहते हैं। और शायद यही वजह है कि इश्क को समझने के लिए ये समय बहुत खूबसूरत है। इसलिए इश्क बाजियां के पहले सेगमेंट इश्क शायराना में मैं बात कर रही हूँ परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की अगली नज्म पर बढ़ते हैं जहाँ वो मोहब्बत को किसी बड़े दावे के साथ नहीं लिखती हैं। वो मोहब्बत को छोटी छोटी यादों, छोटी छोटी मुलाकातों और दिल की हल्की सी कसक में ढूंढती हैं। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत गजल है जिसका पहला ही शेर है, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। कितनी सच्ची बात है, कभी कभी जिंदगी में खुशी और उदासी एक साथ होती है। आप मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी कमी रह जाती है, क्योंकि कुछ लोग हमारी खुशी का हिस्सा बन जाते हैं और जब वो साथ नहीं होते तो खुशी भी थोड़ी अधूरी सी लगती है। और वो आगे लिखती है, मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर हाथ दुआ से यूं गिरा, भूल गया सवाल भी। ये शेर सुनकर लगता है जैसे किसी ने दिल की थकान लिख दी हो। जब हम किसी को बहुत चाह लेते हैं और वो हमें नहीं मिलता तो एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान दुआ करना भी छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद किस्मत में अब वो नाम नहीं है। लेकिन परवीन शाकिर की शायरी की यही खूबसूरती है, वो मोहब्बत को शिकायत नहीं बनने देती, वो उसे एक याद बना देती है। ऐसी याद जिसमें कभी चांद की रोशनी होती है, कभी ठंडी हवा और कभी दिल की हल्की सी कसक। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

उसी खूबसूरत गाने के साथ फिर से स्वागत है। कभी कभी कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बस कानों तक नहीं रुकते, सीधा दिल तक उतर जाते हैं। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। हम बात कर रहे हैं परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की शायरी में सिर्फ इश्क मिल जाने की खुशी नहीं है, उसमें बिछड़ जाने की सच्चाई भी है और याद बनकर रह जाने का दर्द भी है। तो उनका एक और शेर मैं आपको सुनाती हूँ। वो लिखती है, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला तो फूल का है, फूल किधर जाएगा। कितनी खूबसूरत बात है इसमें। कुछ लोग सच में खुशबू की तरह होते हैं, वो हमारी जिंदगी में आते हैं और फिर हवाओं में बिखर जाते हैं। लेकिन जो इंसान उनसे मोहब्बत कर बैठता है, उसके लिए सवाल ये नहीं है कि वो कहाँ गया, सवाल ये होता है कि अब वो खुद किधर जाए। वो आगे लिखती है, हम तो समझे थे कि एक जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी रगे जा में उतर जाएगा। कभी कभी हमें लगता है कि दिल पर लगा दर्द बस थोड़ा सा वक्त मांगता है, थोड़े दिन गुजरेंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिल पर नहीं लगते बल्कि हमारी रूह में उतर जाते हैं, और फिर इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उनकी याद कहीं ना कहीं हमारे साथ चलती रहती है। और फिर वो आगे लिखती है, वो जब आएगा तो फिर उसकी रिफाकत के लिए मौसम गुल मेरे आंगन में ठहर जाएगा। यानी दिल कहीं ना कहीं अब भी उम्मीद लगाए बैठा है कि अगर वो इंसान कभी लौट आया तो जिंदगी फिर से खूबसूरत हो जाएगी। कभी कभी इश्क यादों से ज्यादा उम्मीदों पर जिंदा रहता है, और शायद इसीलिए इंसान पूरी तरह अपने पसंदीदा इंसान को भूल नहीं पाता है। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। हम गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: सब को सब नहीं मिल।
1: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
2: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना, एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, और ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है इश्क शायराना। हम बात कर रहे हैं परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की शायरी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो मोहब्बत को सिर्फ शुरुआत से नहीं देखती, वो उसके बाद की खामोशी भी लिखती हैं। कभी जिंदगी में एक ऐसा मौसम आता है जब सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है, जैसे अचानक जिंदगी में बहुत गुलाब खिल गए हों, लेकिन वही मौसम जब गुजर जाता है तो उसकी याद भी धीरे धीरे दर्द बन जाती है। तो एक शेर है, सुनाती हूँ। गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। यानी जो पल कभी बहुत खूबसूरत थे वही याद बनकर कभी कभी दिल को तकलीफ देते हैं, क्योंकि सच ये है कि इंसान यादों से भाग नहीं सकता, वो चाहकर भी कुछ चेहरों को, कुछ बातों को, कुछ लम्हों को भुला नहीं पाता। और फिर वो लिखती है, राग के ढेर पर अब रात बसर करनी है, जल चुके हैं मेरे खेमे मेरे ख्वाबों की तरह। ये शेर सुनकर लगता है जैसे किसी ने टूटे हुए सपनों की तस्वीर खींचती हो। हम अपने सपनों के साथ इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि जब वो टूटते हैं तो सिर्फ सपना नहीं टूटता, हमारा एक हिस्सा भी टूट जाता है। लेकिन जिंदगी की अजीब बात यही है कि इंसान फिर भी जीता रहता है, वो राग के बीच भी एक नई सुबह ढूंढने की कोशिश करता है। और शायद इसीलिए मोहब्बत चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लोग उससे दूर नहीं भागते, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ खुशी नहीं देती, वो इंसान को थोड़ा और गहरा बना देती है, मैच्योर बना देती है। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। यहाँ पर वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: आज की सेफ्टी टिप्स सुन लो, वरना आपकी लाइफ बन जाएगी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी रील। रूल नंबर वन, जियो टैग मत लगाओ क्योंकि ये इंस्टा है, जोमैटो नहीं। पासवर्ड यूनिक रखो, बर्थडे या लवर का नाम बिल्कुल नहीं, नहीं तो हैक होते ही तुम्हारी एस्थेटिक फीड बन जाएगी कॉमेडी कंटेंट। और हाँ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो, नहीं तो नेक्स्ट स्टोरी होगी न्यू अकाउंट प्लीज फॉलो बैक। और भाई, स्ट्रेंजर्स को पिक्स मत भेजना, ये कोई शादी.com का फास्ट ट्रैक थोड़ी ना है। अननोन लिंक्स, उस पे क्लिक करना मतलब वायरस को चाय पर बुलाना। तो इंस्टा यूज करो, मस्त रहो, पर सिक्योरिटी के साथ, वरना वायरल तो हो जाओगे लेकिन ऑरा माइनस हो जाएगा।

यानी कि एक इंसान अगर साथ हो जाए तो ये पूरा जहां साथ हो जाए। इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। परवीन शाकिब की बात हो रही है, उनकी शायरी बहुत खूबसूरत है, ये तो मानना पड़ेगा कि वो इश्क को सिर्फ कहानी नहीं बनाती बल्कि उसे याद बना देती हैं। ऐसी याद जो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। कभी कभी हम सोचते हैं कि वक्त गुजरने के साथ सब कुछ पीछे छूट जाता है, लेकिन सच ये है कुछ रिश्ते जिंदगी से नहीं जाते, बस दिल के किसी कोने में चुपचाप रख दिए जाते हैं। तो उनका अगला शेर है, याद तो होंगी वो बातें तुझे अब भी, लेकिन शेल्फ में रखी हुई बंद किताबों की तरह। कितनी गहरी बात है इसमें। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम रोज याद नहीं करते, लेकिन हमें पता होता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभी भी मौजूद हैं, जैसे अलमारी में रखी कोई पुरानी किताब जिसे हम बार बार नहीं खोलते, लेकिन उसकी मौजूदगी हमें हमेशा पता होती है। और शायद यही वजह है कि मोहब्बत कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, वो बस अपनी जगह बदल देती है। पहले वो किसी इंसान में होती है और फिर धीरे धीरे वो यादों में रहने लगती है। तो अगला शेर है, हिजर की शब मेरी तन्हाई पर दस्तक देगी, तेरी खुशबुएं मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह। यानी जुदाई की रात जब आएगी तो तेरी याद भी आएगी, ठीक वैसे ही जैसे कोई पुराना ख्वाब अचानक दिल में लौट आया हो। और शायद यही इश्क की सबसे गहरी बात है। इश्क हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता, कभी कभी इश्क बस एक खुशबू बनकर रह जाता है जो वक्त के साथ हल्की तो हो जाती है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होती। और यही खूबसूरत एहसास के साथ आज के इश्क शायरानों को हम यही विराम देते हैं। मैं हूँ इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
1: कुछ हटके
3: आप सुन रहे हैं आरजे गीत को इश्क बाजिया में ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ

वैसे इस गाने में आप किशोर दा की आवाज को फील कर रहे होंगे, लेकिन ये जो आवाज है ये एआई की आवाज है, किशोर दा की आवाज नहीं है। लेकिन है, जहां एआई के कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं वहां कुछ फायदे भी हैं कि हम इन नए गानों को उस पुराने एहसास में जी पा रहे हैं। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और अब सेगमेंट जो शुरू होने वाला है रेट्रो इश्क, जहां ऐसी ही एक मोहब्बत की कहानी के बारे में बात करेंगे जिसकी कहानी भले ही पूरी नहीं हुई हो लेकिन उस मोहब्बत ने कमाल किया है। तो चलिए रेट्रो इश्क में आज फिर चलते हैं, उसी मोहब्बत की गहराई को महसूस करते हैं। और ये खूबसूरत सी मोहब्बत है किशोर दा और मधुबाला की, जहां हंसी सिर्फ एक मुखौटा थी, अंदर कहीं एक टूटा हुआ इंसान था। कहते हैं ना कि कुछ मोहब्बतें बड़ा शोर मचाती हैं और कुछ चुपचाप किसी दिल के कोने में बस जाती हैं। और आज रेट्रो इश्क में उसी मोहब्बत के बारे में बात होगी जिसे हंसी में लपेटा गया मगर आंसू से सींचा गया, किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली की।

0: पर ये तीन आर आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और ये गाना है किशोर दा और लता जी की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत और रेट्रो।

इश्क के इस खास सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। एक दौर था जब मधुबाला बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाती थी। मुस्कुराहट उनकी पहचान थी और चेहरे पर एक ऐसा नूर था जैसे पर्दे पर बस चांद उतर आया हो। और दूसरी तरफ थे हमारे किशोर दा, बॉलीवुड का सबसे चुलबुला बिंदास और थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा सा आवाज का जादूगर। जब दोनों पहली बार मिले तो एक स्टार और एक स्टैंड अप सिंगर की मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात मोहब्बत में कैसे बदल गई? दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट थे, उनको कैसे प्यार हुआ? इसके बारे में बात होगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

रफी साहब की आवाज में है ये गाना और फिल्म हम किसी से कम नहीं जो आई थी 1977 में, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और हम बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। दो ऐसे नाम जिनका जिक्र किए बगैर हिंदी सिनेमा के बारे में बात करना शायद बेईमानी है। एक एक्टिंग वर्ल्ड की सुपरस्टार थी तो दूसरा संगीत जगत के बादशाह। इन दोनों को जिंदगी में सब कुछ मिला, लेकिन इनके प्यार की कहानी का जिस तरह से अंत हुआ वो आज भी आपकी आंखें भिगो देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये दोनों कैसे करीब आए, इनको कैसे मोहब्बत हुई। लोग अक्सर कहते हैं कि मोहब्बत के लिए वक्त चाहिए, पर कुछ मोहब्बतें पहली नजर में ही दिल पर दस्तक दे देती हैं। मधुबाला जो उस वक्त दिलीप साहब की मोहब्बत में थी और अपना दिल जो है वो भी तोड़ चुकी थी, और तभी किशोर दा उनकी जिंदगी में आते हैं एक हंसी का मरहम बनकर। मधुबाला अपने करियर में पीक पर थी जब उन्हें पता चला कि उनके दिल में छेद है और वो विदेश चली गई अपना इलाज कराने के लिए। और इस वक्त ये दोनों साथ में थे, यानी कि किशोर दा और मधुबाला साथ में थे, लेकिन जब किशोर दा को उनका पता चलता है तो उस वक्त वो बहुत भावुक हो जाते हैं और उन्हें सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। और जब कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके साथ जिंदगी का हर लम्हा बिताने की चाह भी रखता है, फिर चाहे उसमें सुख हो या दुख, ये जानते हुए भी कि मधुबाला की जिंदगी का अंत कभी भी हो सकता है। लेकिन किशोर दा ने हमेशा उनका ख्याल रखा और उनसे शादी करने का फैसला लिया, और उन्हें कभी भी इस फैसले को लेकर पछतावा भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत में थे और मधुबाला के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते थे। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

हैं जब इनकी बहुत ही एक सुपरहिट मूवी रही जिसका नाम था चलती का नाम गाड़ी। सेट पर मजाक मस्ती और हंसी के बीच धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे में घुलने लगी। और जब मधुबाला की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहां ये इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन मधुबाला का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। और यहाँ जब किशोरदा की बात आई तो उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए इस मोहब्बत को पूरा करने के लिए, और आखिर में उन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद होता यह है कि किशोरदा की फैमिली मधुबाला को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन पता है इन दोनों की मोहब्बत की सबसे बड़ी बात क्या थी? इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके रिश्ते पर कभी हावी नहीं हुई। देखो यार, हर कोई ये चाहता है कि जब किसी की जिंदगी का कोई नया चैप्टर शुरू हो तो उनकी फैमिली रहे उनके साथ, बड़ों का आशीर्वाद रहे उनके साथ। हालांकि कभी कभी किसी को ये खुशी नहीं मिल पाती क्योंकि उनके परिवार उनसे अलग हो जाते हैं जब वो नए रिश्तों में बन जाते हैं। इनको भी अपनी फैमिलीज को पीछे रखना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था उसी एफर्ट्स के साथ। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। किशोर दा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं और बहुत ही इमोशनल सी इन दोनों की स्टोरी है। अच्छा, जब किसी की शादी होती है और शादी में बहुत सारी कस्में खाई जाती हैं कि वो एक दूसरे का साथ देंगे जिंदगी भर, चाहे सुख हो या दुख। खैर, आज के टाइम में ये बातें जो हैं वो बहुत ही बेमानी सी लगती हैं। शायद प्यार के मायने बदल गए हैं आजकल, शायद वो पहले वाली शिद्दत नहीं रही है। लेकिन किशोर दा की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने अपनी हर कस्म को निभाया, मधुबाला को सबसे अच्छा इलाज उन्होंने कराया, लेकिन उनकी हालत जो है वो बीतते दिन बिगड़ती ही जा रही थी। इतना सब चल रहा था इनके साथ, लेकिन किशोर दा की मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई। जीवन साथी बनने पर लोग कसम खाते हैं कि वो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, और इस बात को किशोर दा ने करके दिखाया। उन्हें पहले से मधुबाला की सिचुएशन के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे शादी की और आखिरी सांस तक उनका ख्याल रखा। ये जो प्यार की कहानी है ना, ये हमें यही सिखाती है कि सुख दुख में अपने साथी के साथ खड़े रहने का मतलब क्या होता है। और आई थिंक आप इनके प्यार की कहानी को समझ ही गए होंगे। एक ऐसा चेहरा जो हमेशा हमें मुस्कुराता दिखा, लेकिन अपनी जिंदगी में कितना कुछ झेल रहा था हमारे किशोर दा। और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी बहुत ही खास सा सेगमेंट लेकर। तब तक आप ये गाना सुनिए।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद,
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो।

पल पल दिल के पास। और इसी गाने के साथ स्वागत है फिर से, शो है इश्कबाजियां और दिल दिया गल्ला लेकर हाजिर हूँ। दिल दिया गल्ला में आपके दिलों की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचानी है, और एक बहुत ही खास से टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। इश्कबाजियां शो है, और कई बार लोग रिश्तों में आ जाते हैं, बड़े बड़े रिश्ते बना लेते हैं, काफी सारे वादे कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं हो पाती है। और लोग कहते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है जो रिश्ता मजबूत नहीं हो पा रहा है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो शायद इस बात के पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप अपने रिश्ते को ना गहराई से नहीं समझ पाते हैं। आप समझते हैं सामने वाले को, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आपको समझना चाहिए। और अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि किस तरह से आप अपने रिश्ते को समझ सकते हैं, सामने वाले की रेस्पेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका रिश्ता और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। इसी बारे में बातें होंगी आज दिल दिया गल्ला में। फिलहाल वक्त है गाने का, शो इश्कबाजियां, और गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से।

0: व्यक्ति की मदद ना ले।
1: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
3: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
4: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
0: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुनो ना। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो आपको रिश्ते और आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग ऐसे रिश्तों में बंध जाते हैं जो उनके लिए आगे चलकर बहुत टॉक्सिक साबित हो जाते हैं। और अक्सर वो लोग घुलते रहते हैं उन रिश्तों में, ना तो छोड़ पाते हैं उन रिश्तों को और ना ही रह पाते हैं। और कई बातों में लोग पहले ही समझ जाते हैं, लेकिन कई रिश्तों में लोग आगे बढ़ जाते हैं और ऐसा रिश्ता टूटना लाजमी है। लेकिन क्या करना चाहिए उस टूटते हुए रिश्ते को बचाने के लिए, ऐसे में रिश्ते को गहराई से आपको बहुत जरूरी है जानना। कोई इंसान आपके लायक है या नहीं आप कुछ बातों पर गौर करके ये पता लगा सकते हैं। तो वो कौन सी बातें होने वाली हैं जिन पर आपको गौर करना है? और सबसे पहली बात पता है क्या है? जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि रिश्ते में भले ही प्यार कम हो जाए, क्या कम हो जाए, लेकिन रिस्पेक्ट कम नहीं होनी चाहिए यार। तो इसलिए रिश्ते में ना रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है और हर किसी रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। लेकिन आपके मन में अपने पार्टनर और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए अगर सम्मान है, इज्जत है, तो आपका रिश्ता ताउम्र चल सकता है। इसीलिए सबसे पहले ख्याल रखिए कि क्या सामने वाला आपकी इज्जत करता है दिल से। आप तो कर रहे हैं, आप तो पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन क्या सामने वाले की तरफ से भी वो एफर्ट्स है या नहीं है? और अगर है तो आप समझिए उसे, और इस तरह समझकर आप अपने रिश्ते को बेहतरीन साबित कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है गाने का, चलिए सुनते हैं इस गाने को। फिल्म भाग मिल्खा भाग से है गाना, बगैर तेरी किए सुनते हैं इस ट्रैक को।

बातें आहिस्ता हैं और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है पंकज उदास की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना और आहिस्ता कीजिए बातें। सेगमेंट है दिल दियां गल्लां और बातें चल रही हैं कि किसी भी रिश्ते को गहराई से कैसे समझा जाए। कहते हैं कि हर रिश्ते की नींव होती है विश्वास। कोई रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब एक दूसरे पर आपको पूरी तरह से यकीन हो। अपने रिश्ते को हेल्दी बनाने के लिए और गहराई से जानने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत जरूरी है और ये भरोसा ही वो होता है जो एक स्पेशल बॉन्ड बनाता है। तो इसीलिए आप अपने पार्टनर पर, आप जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उस पर भरोसा बनाए रखिए। और अगर सामने वाला आप पर भरोसा करता है ना दिल से, तो आप उसके भरोसे को कभी ना तोड़े, क्योंकि ये ट्रस्ट अगर एक बार टूट गया तो जुड़े नहीं जुड़ता है यार। क्योंकि कहा ना, हर रिश्ते की नींव होती है यकीन। और इस तरह से आप किसी को गहराई से जान सकते हैं। फिलहाल वक्त गाने का है, शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली की।

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

ऐ काश कि हम होश में आने ना पाए। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दिया गल्ला। बातें चल रही हैं कि कैसे अपने रिश्ते को गहराई से जाने। कहते हैं कि जब किसी से प्यार होता है तो उस पर आप पूरा अधिकार जमा सकते हैं, लेकिन अधिकार तो जमा रहे हैं आप, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जान लीजिएगा कि अधिकार के चक्कर में कहीं आप उसकी आजादी तो नहीं छीन रहे। जिससे भी आप प्यार करते हैं उसे आजादी देना बहुत जरूरी है। अगर वो आपका है तो आप भले ही उसे कितनी आजादी दे दीजिए, वो हमेशा आपका ही रहेगा, हमेशा आपके पास ही लौटेगा। तो इसीलिए रिश्ते में ना आजादी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसकी आजादी छीन लेते हैं तो यकीनन उस रिश्ते का अंत हो ही जाता है एक दिन। और साथ ही साथ एक कम्युनिकेशन गैप होता है ना, उसको भी आप फिल कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपने पार्टनर को गहराई से जान सकते हैं, रिश्ते को गहराई से जान सकते हैं। और अपनी बातों को मैं विराम दूंगी क्योंकि समय सीमा समाप्त हो गई है, और मैं ऐसे ही खास से टॉपिक के साथ आपसे मिलने वाली हूँ। लेकिन अभी दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित

0: स्टार्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: ओ करम खुदा है, ओ करम।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं, लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल को आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ये भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
0: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।
2: उनके जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंस के देखो ना लतीफा तुम्हें सुनाते हैं।

0: आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना सा है तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब।

0: इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
1: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: झुमका लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी, सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: कोई हमसे।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: सीधा सादा है।
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है।
1: क्या?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाबा
0: सुनो तो मोना सुनो तो सुनो तो आप यहाँ आए इसलिए आपने बुलाया इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए पहले जरा आप मुस्कुराइए पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: मुस्कुराई पहले जरा मुस्कुराई
1: पहले जरा मुस्कुराई।
2: कबीर ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।
2: जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंस के देखो ना लतीफा तुम्हें सुनाते हैं।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: दूं, गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

मेरा दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान भी टच जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BAD शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
3: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
4: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
4: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
5: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
0: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।

0: शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
0: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो

श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्म स्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: से आज तक कभी किसी का मंगल नहीं हुआ है। यह आपके समस्त गुणों का नाश कर देता है।
1: सत्य है ना, जैसे सूर्य प्रकाशित हुआ तो अंधकार हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, ऐसे आप सत्य को धारण केवल कीजिए, फिर आप देखिए प्रकाश में हो जाए।
0: इसलिए क्रोध की संगति से दूर रहें। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल गुरु प्रेमानंद जी के विचार।
2: एक ही उपाय है, गुरुदेव की शरण। जैसे हित हरिवंश विचारी के मनुज देह गुरु चरण गहे, सकहि तो सब परपंच तजी, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, विचार करके देख लो सार क्या है। जितना तुम कुछ जो भी कर रहे हो इसमें सार क्या है? यदि भजन नहीं हो रहा तब निशा व्यर्थ है तुम्हारा जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रिप्यामी। वो मरा हुआ डोल रहा है, मुर्दा है। आप कहोगे किसी जीवित को मुर्दा कैसे कह सकते हो? जो विषयों के अधीन है, भोगों के अधीन है, मलिनता को लिए हुए विचर रहा है, वो मरा हुआ ही तो है। जीवित तो तभी माना जाए जब वो निर्विषय हो जाए, सच्चिदानंद भगवान की रस में डूब जाए। तो कैसे इससे हम आगे बढ़े? माया प्रपंच से कैसे आगे बढ़े? हमारा मन तो बड़ा मलिन हो गया, और भजन साधन निर्मल मन से होता है। तो बोले गुरुदेव की शरण लो, विचार करो, कोई और उपाय नहीं। जैसी हरिवंश विचार कह मनुज देह गुरु चरण गए। ये मनुज देह की सार्थकता गुरु चरणों में क्या? बहुत दुर्लभ है सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होना। आप लोगों को अनुभव भी नहीं आ रहा, इसलिए कि आपके अंदर भूख नहीं है प्रियालाल की। अगर भूख होती ना तो फिर आपको जो स्वाद मिलता, फिर आप कह देते पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवाय। उपदेश दे देना, मंत्र दे देना कृपा का लक्षण है। आपके ऊपर कृपा है इसलिए मिल गई। लेकिन हाथ पकड़ के श्री जी के हाथ में दे देना बड़ा दुर्लभ विषय है। ये एक सदगुरु भगवान ही ऐसी कृपा करते हैं कि अपने जैसे अधमों को उपदेश, मंत्र, नाम और शासन और दुलार, इसके द्वारा हमारे मन को अधीन करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देते हैं। इस मल को केवल सदगुरु रूपी रीठा ही साफ कर सकता है, दूसरा नहीं। हरि आपको डांटेंगे नहीं, हरि तो बोल दिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुम करोगे भोगोगे। लेकिन सदगुरु ऐसा नहीं, करो तुम भोगेंगे हम, चिंता मत करो, ये बात कहीं नहीं मिलेगी। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। महाप्रभु हरिवंश गुरु है, गुरु हरिवंश क्या कह रहे? तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, ऐ शरणागत तू चिंता मत कर, चिंतन कर मेरी प्रियाजू का। अगर भूल चूक से अपराध बन जाएंगे मैं उसे भोगूंगा, तुम चलो श्री जी के पास। ये त्रिभुवन में ऐसा दयालु कोई नहीं गुरुदेव जैसा। वो हमारे क्षुद्र दोषों को ना देख करके अपनी कृपा से हमें वो महान रस देते हैं जो किसी साधना से नहीं मिलता है। अगर गुरु सानिध्य मिल गया है तो प्रमाद मत करना कभी। बहुत बढ़िया अवसर मिला है, निकल जाओ। आपको विशेष साधना नहीं करनी पड़ेगी। नौका में बैठे हो, हिलो डुलो मत, उसका बैलेंस मत बिगाड़ो। यद्यपि डूबेगी नहीं अविनाशी नौका है, पर तुम भयभीत हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। नाविक बड़ा खिलाड़ी है, उसको कोई परेशानी होने वाली नहीं। नाव सच्चिदानंद में वो डूबेगी नहीं, तुम परेशान हो जाओगे। नाव में बैठे बैठे तुम घबरा जाओगे, तुम भयभीत हो जाओगे, तुम अशांत हो जाओगे। अपने हृदय में एक बात ठान लो, देखो जीवन तो लोग तुच्छ चीजों में दे देते हैं। पता नहीं कैसा तुम्हारा व्यापार है, कैसा तुम्हारा बुद्धि का विचार है, एक साधारण संबंधों में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो आप। पति पुत्र परिवार नाना प्रकार के एक एक में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो। प्रियालाल के शरण में आने पे तुम्हें डर क्यों लग रहा है? वो तो निर्भय है, इनकी शरणागति का स्वरूप ही है निर्भय, निश्चिंत, निशोक, और सनातन हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। बहुतों को प्यार करके जीवन का जीवन दे दिया, एक बार इनका पाणी ग्रहण स्वीकार करो। देखो आप लोग पाणी ग्रहण स्वीकार करते हैं, कैसा भी हो जीवन निर्वाह करते हैं। इनके तो वेद यश गाते गाते थकते नहीं हैं, ये तो अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल है। इनके हाथ में हाथ देने में तुम्हें क्या परेशानी हो रही? चाहे जितना भटक लो अनंत जन्मों में, विश्राम तो यही मिलेगा आके। काहे को लंबी यात्रा करोगे, इसी जन्म में विश्राम गृह में पहुंचो, श्री वृंदावन विश्राम। महाप्रभु कह रहे हैं विश्राम स्थल कहां है? श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जू के गोरे चरणारविंद के समीप। जब हम विचारधाराएं देखते हैं तब लगता है तुम समर्पित क्या हो, शरणागत क्या हो। हम श्री जी के आश्रित होने के लिए व्याकुल हैं, श्री जी से मिलने के लिए व्याकुल हैं। ये तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। अपने लोग तो विषय भोग के लिए व्याकुल हैं, कहलाते हैं श्री जी के और चाहते हैं विषय सुख, चाहते हैं संसार का अनुकूल भाव। कैसी विपरीतता है, कैसी विपरीतता, बड़ा विचित्र माया का आकर्षण है। अब इस विचित्रता में भारी विचित्रता गुरुदेव की कृपा है। बस ऐसी दुरंत माया को परास्त करके आपको निकाल के श्री जी से मिला दे, वो एक ही शब्द है केवल, वाहे गुरु बोलो, सदगुरु बोलो, गुरु बोलो, गुरुदेव जय गुरुदेव, कुछ भी बोलो, वो एक ही है जो आपको बचा सकता है, दूसरा नहीं।